नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम समस्या समाधान, जहां हर परेशानी का मिलता है हल, जहां हर सवाल का होता है सरल और सटीक जवाब। जी हाँ दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन सही दिशा और सही सोच से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। और इसी क्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही दी हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप ऐसे मिस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: पे सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए।
1: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: सब कुछ दे देती है। क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत में राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावो, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज तकी आराज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपरो सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो रफपॉइंट 8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो हमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे हमारे डैम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत में विषय है गांव स्तर माते पशुधन स्वास्थ्य ने टीकाकरण ने हूँ आवश्यकता है आन हूँ उद्देश्य है ने आंत की हूँ लाभ थे सके। तो भाई बोनो अण विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी आप तक की घना कानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन पहले अपने हमरा विदा गीत मरे कर आपकी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रहसू आप

0: માઇન બુનુ ગીત નો આયશો પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સપનું ઘણીમાન સ્વાગત કરો હ અમારે આસે કાર્યક્રમ ખેતી વાળી મેં જેમ કે ભાઈન બુનુ ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ ગાંવ વિસ્તાર માટે પશુધન સ્વાસ્થ્ય એ ટીકાકરણની હું આવશ્યકતા હે આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મનીષજી તો સૌથી પહેલા આપણે હમરી લણાની વાત મોરે કરા આપણી વાતે सर नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि गांव स्तर पर पशुधन स्वास्थ्य और टीकाकरण की आवश्यकता क्यों है और इसका क्या महत्व है।
1: जी बिल्कुल, अगर हम हमारे क्षेत्र की बात करें जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे जो कृषि परंपराएं हैं उनमें पशुधन इसकी रीढ़ मानी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और पशुपालन सिर्फ कृषि के लिए आवश्यक नहीं है, पशुधन का पालन कई आर्थिक प्रणालियों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे दूध, मांस, अंडे और श्रम जैसी कई सेवाएं हमें देते हैं। ग्रामीण परिवारों की आजीविका में इसीलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
0: बिल्कुल।
1: अब अगर हम बात करें कि उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण की, तो पशुधन कई बीमारियों के प्रति बहुत जो है संवेदनशील होते हैं और ये बीमारियां या ये उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उत्पादकता और उनके विकास को प्रभावित करते हैं।
0: जी जी।
1: जिसके दीर्घकालिक परिणाम कभी कभी बहुत ही खराब होते हैं। तो पशु चिकित्सा सेवा और टीकों तक जो पहुंच अभी कम है हमारे पशुपालकों की, इसी के कारण इनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसका सीधा सीधा एक परिणाम पशुपालक को भी होता है कि उनका दो तरफा आर्थिक नुकसान होता है।
0: बिल्कुल।
1: एक पशुधन का उत्पादन क्षमता कम होना और दूसरा उनकी जेब पर पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ज्यादा बीमार होने पे उनको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो इस दोहरे नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि ग्राम स्तर पे हम स्वास्थ्य और टीकाकरण को जो है बहुत स्वास्थ्य जांच और उसका निदान और इसी के साथ में जो है टीकाकरण, इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इसकी आवश्यकता से हम इनकार नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से गांव स्तर पर स्वास्थ्य और टीकाकरण की जो आवश्यकता है उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। यही सर इसके फायदे क्या होंगे, यानी कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा हमारे लिए।
1: जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें कि ग्राम स्तर पे यदि पशुधन स्वास्थ्य और टीकाकरण नियमित होने लगे, तो सबसे पहला तो है कि हमारे पशुधन के स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि स्वास्थ्य जांच जो कि वैसे भी सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती है, तो हमारे पशुधन की नियमित स्वास्थ्य जांच हो, समय समय पर पशुधन को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां हैं उनको रोका जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: और उनके उपाय अपनाए जा सकते हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे पशु

0: गंभीर बीमारियों के खिलाफ व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित करने से हमारे पशुधन में आने वाली कुछ बड़ी बीमारियों को जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं
1: जी हाँ।
0: या फिर उनको होने से या आने से पूरी तरह से हम रोक सकते हैं, जिससे टीकाकरण जिन बीमारियों के लिए होते हैं वो अगर पूरी तरह रुक जाएगी तो इससे होने वाले प्रभाव को जो है हम पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: इसी के साथ हमें ये भी लगता है कि हमारे किसानों को जो है सशक्त बनाना होगा। पशुधन के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है उनके सर्वोत्तम तरीके और इसी के साथ साथ आवश्यकता होने पे या समय समय पे हमें पशु स्वास्थ्य सेवाओं का भी जो है उपयोग करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: इसी के साथ साथ हमें हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, इनको ये जानकारी भी देना आवश्यक है कि कब कौन से समय कौन सा टीकाकरण करवाना है या किस तरह से जो है पशुधन के लक्षणों को देख के वो ये अनुमान लगा सके कि ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं है। अगर वो लक्षणों को देखना पहचानना सीख जाएंगे तो होने वाले बड़ी बीमारियों को जो है आसानी से रोका जा सकता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि हमें हमारे किसानों को भी जो है सशक्त बनाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो रोग एक तरह का बोझ होता है, चाहे वो किसी को भी हो।
1: बिल्कुल।
0: सामान्य रूप से हमको भी सामान्य सिर दर्द होता है तो हमारे मन में ये भावना आती है कि हे प्रभु, ये सिर दर्द क्यों है, ये नहीं होता तो मैं कुछ बेहतर कर लेता, मैं काम निपटा लेता। तो इसी तरह से जब हमारे पशुधन पे भी कोई रोग या बीमारी आती है तो वो उस पे बोझ हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: तो इसका एक कारण ये भी है कि पशु चिकित्सा सेवाओं तक जो है हमारी यानी कि पशुपालकों की पहुंच जो है सीमित है और इसी के कारण बीमारियों का बोझ उन्हें झेलना पड़ता है। जैसे यदि अभी आने वाले समय में भी हम बात करें तो इस समय क्योंकि अब बारिश का समय नज़दीक है और ये समय है खुरपका मुंहपका यानी कि FMD का टीका लगवाने का, तो इसके कारण जो हमारे पशुधन को तकलीफ होती है वो खड़े होने में भी तकलीफ होती है क्योंकि उनके खुर जो है पक जाते हैं, उनमें से मवाद आने लगता है और वो पाँव को टिका नहीं पाते। इसी के साथ साथ इसके जो विषाणु हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके मुंह में भी घाव और सूजन बना देते हैं जिससे वो खा नहीं पाते। तो इतनी घातक बीमारी को होने से रोकने का बहुत आसान उपाय है कि बस अब हम हमारे पशुधन के टीकाकरण में जो है FMD का टीका जरूर लगवाएं। हमारे जो भी मादा पशुधन हैं उनमें ब्रुसेलोसिस और बोवाइन के टीके भी जो है हमको लगवाना चाहिए, तो ये इनको तपेदिक जैसी बीमारियों से भी जो है बचाते हैं। और सभी तरह से यदि

0: उग बोझ को कम कर सकते हैं और हमारे पशुपालकों के आर्थिक बोझ को भी कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से

0: तो यदि हम स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के लिए गतिविधियों की बात करें तो पहला तो होगा कि हम स्वास्थ्य जांच और निदान के लिए जो है उन समस्याओं की पहचान करें जिसके लिए हमारे पशुधन का जो है स्वास्थ्य जांच और निदान करवाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम जो पहचानी गई स्थितियां हैं उसके अनुसार भी बाकी हमारे जो गांव के किसान हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं कि क्या उनके पशुधन में भी इस तरह की स्थितियां चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से देखी जा रही है या उनको ऐसा लग रहा है क्या। तो इसी के साथ में जो है टीकाकरण अभियान के रूप में हम जो है इसको ले सकते हैं ग्राम स्तरों पे।
1: बिल्कुल।
0: तो जो भी प्रचलित बीमारियां हैं जिनके खिलाफ टीके जिस समय पे लगाए जाते हैं तो एक तो किसानों को जो है अपने स्तर पे उसका रिकॉर्ड रखने की थोड़ी सी आदत रखना होगी ताकि उन्हें ये पता रहे कि ये वाला टीका लग चुका है और ये वाला टीका बाकी है, क्योंकि कुछ टीके ऐसे हैं जिनको साल में 2 से 3 बार तक लगवाना पड़ता है, यानी कि उनका बूस्टर डोज दिया जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा वो उसके लिए या तो कहीं पे लिख के रख लें कि ये टीका लग चुका है और अब कितने समय के बाद वापिस इसको लगवाना है। तो यदि ग्राम स्तर पे सारे पशुपालक मिल के इस तरह के आयोजन करते हैं कि वो या तो एक जगह पे अपने पशुधन को इकट्ठा कर लें और जो पशु स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सूचित करें कि हम इस दिन अपने सारे पशुधन को इकट्ठा करेंगे, तो वहां पे आप आके उनका स्वास्थ्य जांच कर लीजिए, उसके जो निदान हो सकते हैं वो कर दीजिए और इसी के साथ में उस समय पे होने वाले टीकाकरण के लिए भी जो है हम हमारे पशुओं को इकट्ठा करेंगे तो आप टीका भी लेके आइए। क्योंकि टीकाकरण भारत सरकार ने भी जो है अनिवार्य रूप से एक बड़े अभियान के रूप में लिया है तो हमारे पशुपालकों को भी जो है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कुछ स्तरों पे हो सकता है कि हमें किसानों के लिए कार्यशालाएं करना हो, हम जो स्वयं

हम छोटे छोटे अंतराल पे छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, उनके उपलब्ध समय के अनुसार जो है उन कार्यशालाओं का आयोजन यदि लगातार करते हैं तो इससे किसानों को जो है ये पता रहेगा कि

से ये जान पाए कि किस तरीके से गांव स्तर पर पशु स्वास्थ्य और टीकाकरण की आवश्यकता को हमें बढ़ावा देना चाहिए और क्या क्या गतिविधि करनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को हमें बताया है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तो मवेशियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उच्च टीकाकरण की दरें हैं वो बढ़ जाएंगी, इसी के साथ किसानों का ज्ञान भी बढ़ेगा और मजबूत पशु चिकित्सा सेवाएं भी पशुओं को मिल पाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ढेर सारे फायदे होंगे अगर गांव स्तर पर हम इन सारी चीजों को

0: मोटा अनाज मोटा अनाज।
1: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
2: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
0: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
1: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
2: वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को ये समझाना कि उत्तर देने की जल्दी नहीं पहले समझने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: ये एक बहुत ही जरूरी शिक्षा है कशिश, जो आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी दुनिया में बच्चे अक्सर जल्दबाजी में उत्तर देने की कोशिश करते हैं।
0: जी हाँ,
1: चाहे स्कूल हो या सामान्य बातचीत, उन्हें सिखाना होगा कि सोच समझकर जवाब देना ज्यादा जरूरी है और उनके संपूर्ण विकास के लिए भी बेहद लाभकारी है। आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों को ये समझा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि गीत संगीत का दस्तूर है कार्यक्रम का, तो क्या ना शुरुआत में पहले गीत सुन ले हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ,

0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को हमें ये बताना है कि जवाब देने की जल्दी नहीं, पहले समझना जरूरी है।
1: जी जी
0: अंजलि जी, जैसा कि आपने गीत से पहले भी बताया था कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बच्चे भी हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि तुरंत बोलना ही चतुराई है। लेकिन साथियों, क्या वे जो कह रहे हैं वे खुद समझ पा रहे हैं? क्या जवाब देने से पहले वे बात को पूरी तरह समझ रहे हैं? इसी सोच को बदलने और बच्चों में समझदारी की भावनाओं को विकसित करने के लिए ये जरूरी है कि हम उन्हें ये सिखाएं कि जवाब देने की जल्दी नहीं, बात को समझना पहले जरूरी होता है।
2: बिल्कुल कशिश, इसकी शुरुआत घर से करें, यानी कि सही माहौल बनाएं। बातचीत के तरीके की बात करें तो बच्चों से बात करते समय खुद भी धीमे बोलें और सोच समझकर बोलने को प्रोत्साहित करें। जब बच्चा कुछ कहे तो उसे ध्यान से सुनें और बीच में न काटें, इससे उसे लगेगा कि ध्यान देना जरूरी होता है। उदाहरण देकर भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। श्रोता साथियों, बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से चीजें जल्दी समझ में आती है।
0: बिल्कुल,
2: अगर उदाहरण की बात करें तो बच्चों को हमें बताना है कि अगर किसी ने तुमसे पूछा है कि एक पेड़ पर चार पंछी बैठे हैं, दो उड़ गए तो कितने बचे, जल्दी में बच्चा बोलेगा दो, पर सही उत्तर है दो उड़ गए तो अभी भी दो बैठे हैं, सोचो समझो और फिर उत्तर दो।
0: बिल्कुल,
2: इसी के साथ खाने में अगर हम बिना देखे जल्दी से मिर्ची खा लें तो नुकसान हो सकता है। मतलब हर चीज में सोचना समझना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
2: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों से हमें कहना है कि जब भी कोई सवाल आए तो मन में पांच तक गिने फिर जवाब दें। यह अभ्यास उनके सोचने की क्षमता को बेहतर बनाता है। जवाब देना ताकत नहीं, जवाब से पहले सोच लेना समझदारी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों हम उन्हें ये भी बताएं कि जब कोई कुछ कह रहा होता है तो पूरा सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अधूरी बात पर जवाब देने से गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं।
2: बिल्कुल,
0: समझने से बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ती है, विश्रोता साथियों जल्दबाजी से बचते हैं और बातों का विश्लेषण करना सीखते हैं। साथ ही जब बच्चे थोड़ा रुक कर सोचते हैं वे अक्सर सही और प्रभावशाली उत्तर भी दे पाते हैं।
1: जी जी
0: दोस्तों, अब यही अगर बात करें कि जल्दबाजी में उत्तर देने से क्या होता है, तो सबसे पहले तो गलत जवाब दे दिया जाता है, यानी कि बिना सोचे समझे उत्तर देने से उत्तर गलत भी हो सकता है, ये हम अपने बच्चों को बताएं। कई बार बच्चे जल्दबाजी में अंजलि जी बड़ों की बात बीच में ही काट देते हैं, जिससे असम्मान की भावना भी बड़ों में पैदा होती है।
1: बिल्कुल,
0: ये भी आप अपने बच्चों को बताएं श्रोता साथियों। साथ ही ये भी बताएं कि यदि बच्चा पूरी बात नहीं समझता है और बीच में बोल देता है तो दूसरों को भी भ्रम हो सकता है।
2: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि हमें समझ का महत्व भी बच्चों को समझाना है, यानी कि सिर्फ रटने से नहीं होता ज्ञान, यानी कि बच्चों से कहना है कि अगर तुम बिना समझे जवाब दो तो परीक्षा में गलती हो सकती है।
0: जी जी,
2: लेकिन अगर पहले समझो फिर जवाब दो तो खुद ब खुद ये सारी चीजें हमें आ जाती हैं। क्लासरूम का भी उदाहरण हम बच्चों को दे सकते हैं कि अगर टीचर कुछ समझा रही है तो तुम तुरंत जवाब देना चाहो तो शायद पूरा सवाल ही न सुनो और गलत उत्तर दे दोगे। इसी के साथ हमें बच्चों को दोष नहीं दिशा देनी है, यानी कि अगर बच्चा जल्दबाजी में गलत उत्तर दे तो उसे डांटना नहीं है बल्कि कहना है कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना, तुम और बेहतर करोगे। जब घर में कोई निर्णय हो, जैसे कि कौन सी फिल्म देखनी या कहाँ जाना है, तो बच्चों के सामने सोच समझ कर निर्णय लें, कहें थोड़ा सोच लेते हैं फिर जवाब देंगे। ऐसे में बच्चे भी ये सारी चीजों को कशिश सीख पाएंगे।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही हैं, ये बातें निरंतर और भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में, जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे थे कि हम हमारे बच्चों को कैसे बताएं कि जवाब देना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हम हमारे बच्चों को एक छोटी

0: स्कूल में बच्चे उसे तेज दिमाग वाला गोलू कहते, उसे इस बात का गर्व भी था। पर कशिश जब भी कोई सवाल पूछता तो गोलू सबसे पहले हाथ उठाकर जवाब देता, भले ही वह सही हो या गलत, उसकी यह आदत बन गई थी, पहले जवाब दो बाद में सोचो। एक दिन स्कूल में विज्ञान की परीक्षा थी और गोलू बहुत आत्मविश्वासी था। परीक्षा में एक सवाल आया कि ऐसा कौन सा जीव है जो बिना आँखों के देख सकता है।
1: जी हाँ।
0: गोलू ने सवाल पढ़ते ही मुस्कुराते हुए

0: बोले, बेटा क्या तुमने सवाल को ध्यान से पढ़ा था? गोलू बोला, हाँ देखा और तुरंत जवाब दे दिया। दादू ने एक लोटा पानी लिया और उसमें एक चुटकी नमक डाला और बोले, क्या दिख रहा है पानी में? गोलू बोला, साफ पानी। दादू बोले, अब इसका स्वाद चखो। गोलू ने चखा, ये तो खारा है। दादू बोले, देखो जैसे तुमने ऊपर से देखा तो नमक नहीं दिखा लेकिन भीतर था, वैसे सवाल को भी केवल ऊपर ऊपर मत देखो, समझो कि वो क्या कहना चाहता है। दादू ने फिर से सवाल पढ़ाया कि ऐसा कौन सा जीव है जो बिना आंखों के देख सकता है? अब गोलू ने ध्यान से सोचा और फिर बोला, चमगादड़, जो आवाज की गूंज से रास्ता पहचानता है।
1: बिल्कुल।
0: दादू ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह, अब तुमने जवाब देने से पहले समझने की ताकत सीखी है, यही असली समझदारी है। अगले दिन से गोलू की आदत बदल गई। अब वह किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले पढ़कर सोचता, ध्यान से समझता और फिर उत्तर देता।
1: जी हाँ।
0: कशिश धीरे धीरे गोलू न केवल सबसे समझदार बच्चा बन गया बल्कि वह दूसरों को भी सिखाने लगा। श्रोता साथी, उत्तर देना जरूरी है लेकिन समझना भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
0: जल्दी जवाब देना होशियारी नहीं, सही जवाब देना समझदारी है। सोचो समझो फिर बोलो, यही असली बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ दोस्तों, हम बच्चों को घर पर भी अभ्यास कराएं, जैसे कि बच्चों से प्रश्न पूछें और कहें कि सोच कर इसका जवाब दो। साथ ही आप एक खेल भी खेल सकते हैं जिसमें बच्चे को जवाब देने से पहले 10 सेकंड सोचना होता है। इसी के साथ ही जब बच्चा सोच समझ कर बोलता है अंजलि जी, तो उसकी तारीफ हमें करनी है, इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तब भी बच्चों को सोचने का समय देना चाहिए। उन्हें याद दिलाना है श्रोता साथियों कि जवाब से पहले समझना जरूरी होता है।
0: बिल्कुल।
1: और अगर उत्तर गलत हो जाए तो हम उन्हें डांटने के बजाय समझने पर जोर दे सकते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जब बच्चे जल्दबाजी में जवाब दे, वे कई बार सवाल को अधूरा समझ लेते हैं जिससे गलती होती है। इसके विपरीत जो बच्चे ठहर कर सवाल को सोचते हैं, वे अधिक सटीक और सटीक उत्तर दे पाते हैं। श्रोता साथियों, बच्चों के व्यवहार और सोच पर सबसे ज्यादा असर उनके परिवेश का होता है।
1: बिल्कुल।
0: जब परिवार और शिक्षक स्वयं सोच समझकर बात करते हैं, ठहराव के साथ निर्णय लेते हैं और बच्चों को जल्दी जवाब देने के बजाय सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तब बच्चे भी यही सीखते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों को जवाब देने की जल्दी से ज्यादा समझने की जरूरत सिखाना आज के समय में बेहद जरूरी है। ये केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं साथियों, बल्कि एक सभ्य, समझदार और सोचने वाला नागरिक बनाने के लिए जरूरी है।
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि जब बच्चा समझकर उत्तर देना सीखेगा तभी वह सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनेगा। दोस्तों, कहा भी गया है कि जल्दी जवाब देना नहीं, समझदारी से बोलना सीखो। शब्द बाण बन सकते हैं, सोचकर चलाना सीखो।
0: जी हाँ। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें रही हैं। आशा करते हैं कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाकर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है। जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आपकी आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश और मनीषा हम बात करने वाले हैं सच्चा प्रेम और अहंकार को लेकर।
0: जी हाँ
1: साथियों, मनुष्य के जीवन में दो भावनाएं ऐसी हैं जो उसके व्यक्तित्व और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती हैं। सच्चा प्रेम और अहंकार, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है मनीषा। जहाँ सच्चा प्रेम त्याग समर्पण और समझ का प्रतीक है कशिश, वहीं अहंकार स्वयं को सर्वोपरि मानने की भावना है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा गया है जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं नहीं हम होता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा जागृति जी। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं को हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें बताएंगे। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथी शुरुआत में गीत संगीत के साथ पहले कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन करते हैं, तो क्यों ना आज भी कार्यक्रम के उसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों को मनोरंजन इस गीत के साथ हम करवाएं।
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल कशिश। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सच्चा प्रेम और अहंकार।
1: बिल्कुल।
0: जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि मानव जीवन में दो भाव ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तित्व, संबंध और जीवन की दिशाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं, सच्चा प्रेम और अहंकार। श्रोता साथियों, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ सच्चा प्रेम जोड़ता है, वहीं अहंकार तोड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: प्रेम में विनम्रता, त्याग, सहनशीलता और अपनापन होता है।
1: बिल्कुल।
0: जबकि श्रोता साथियों, अहंकार में घमंड, स्वार्थ, अलगाव छिपा होता है। आज के दौर में श्रोता साथियों, विशेषकर युवाओं के जीवन में इन दोनों भावों का संतुलन बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: युवा अवस्था वह समय है साथियों, जब व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करता है, रिश्ते बनाता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यदि इस समय सच्चे प्रेम को अपनाया जाए और अहंकार को दूर किया जाए, जागृति जी, तो जीवन सफल और सुखद बन सकता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। और हम देखते हैं कि युवावस्था जीवन का वह दौर है जहाँ भावनाएं गहरी होती हैं, सपने बड़े होते हैं और रिश्तों की समझ विकसित हो रही होती है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, इसी समय प्रेम और अहंकार दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन जानने के लिए सवाल ये है कि क्या प्रेम और अहंकार एक साथ चल सकते हैं, या फिर इनमें संतुलन बनाना ही जीवन की असली कला है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं साथियों कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण या फिर बाहरी सुंदरता से जुड़ा नहीं होता। यह एक गहरी भावना होती है जिसमें त्याग, समझ, सम्मान और विश्वास शामिल होता है। हम कह सकते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त के हो, जिसमें स्वार्थ की जगह समर्पण हो, जहां दूसरों की खुशी में अपनी खुशी दिखाई दे।
0: बिल्कुल।
1: और आज के समय में तो जागृति जी, अक्सर युवा प्रेम को सिर्फ फीलिंग या रिलेशनशिप स्टेटस तक ही सीमित कर देते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन सच्चा प्रेम इससे कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है।
2: बिल्कुल कशिश, जैसे कि हम सच्चा प्रेम और अहंकार की बात कर रहे हैं, तो सच्चा प्रेम वो भावना है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है। इसमें न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षा होती है, केवल देने में विश्वास करता है, पाने में नहीं। सच्चा प्रेम किसी के गुण दोषों को स्वीकार करता है श्रोताओं, और हर परिस्थिति में साथ निभाता है।
1: बिल्कुल। हाँ।
2: माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, मित्रों के बीच विश्वास, या किसी के लिए बिना कारण चिंता करना, ये सब सच्चे प्रेम के उदाहरण है। श्रोताओं, अहंकार का मतलब है अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझना और दूसरों को कमतर रखना। ये व्यक्ति के भीतर एक ऐसा भ्रम पैदा करता है मनीषा, कि वो कभी गलत नहीं हो सकता।
1: जी हाँ।
2: अहंकार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसे अकेला बना देता है कशिश। जब
1: हाँ।
2: इंसान अपनी सफलता, धन या ज्ञान के कारण दूसरों को छोटा समझने लगता है, तब अहंकार जन्म लेता है। इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि अहंकार वो दीवार है जो रिश्तों को भी तोड़ देती है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में युवा तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा है। वे करियर, रिश्ते और समाज की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, सच्चा प्रेम उनके जीवन में संतुलन लाता है।
1: बिल्कुल।
0: उनको मानसिक शांति देता है। सच्चा प्रेम श्रोता साथियों, मन को स्थिर और शांत रखता है। यह तनाव और चिंता को कम करता है, साथ ही यह प्रेम से

0: को बेहतर बनाने की कोशिश करता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। अब बात ये आती है कि प्रेम और अहंकार का टकराव अगर हो जाए तो क्या होगा
2: जी?
1: तो साथियों, सच्चा प्रेम और अहंकार कभी भी एक साथ नहीं रह सकते।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम होता है, और जहाँ अहंकार होता है साथियों वहाँ केवल मैं की भावना होती है।
2: जी हाँ,
1: हम देखते हैं जागृति जी और मनीषा की जब किसी रिश्ते में अहंकार आ जाता है तो छोटी छोटी बातें भी झगड़ों का कारण बन जाती है।
2: जी हाँ,
1: माफी मांगना कठिन हो जाता है और संवाद की तो कह सकते हैं कि दिलचस्पी ही खत्म होने लगती है।
2: जी हाँ, बिल्कुल
1: दोस्तों, इसी कारण से कि कई रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपने अहंकार को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। ऐसे में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अहंकार पूरी तरह बुरा नहीं होता।
2: जी,
1: एक स्वस्थ आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। दोस्तों, आत्मसम्मान हमें गलत चीजों के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है।
2: बिल्कुल,
1: ये हमें अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जब यही आत्मसम्मान अहंकार बन जाए तब समस्या और बड़ी बन जाती है।
2: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि हमारी बातें चल रही है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, तो बातें ऐसी ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता

0: बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी अहंकार और सच्चे प्रेम को लेकर, तो यही जानते हैं अहंकार और सच्चे प्रेम को लेकर कि सच्चा प्रेम और अहंकार में सबसे बड़ा अंतर ये है कि सच्चा प्रेम झुकना सिखाता है मनीषा, और अहंकार ऊंचा दिखना चाहता है। सच्चा प्रेम माफ करना सिखाता है, अहंकार बदल लेने को उकसाता है। सच्चा प्रेम रिश्ते जोड़ता है और अहंकार रिश्ते तोड़ता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ समझ और धैर्य होती है, लेकिन जहाँ अहंकार होता है वहाँ केवल विवाद और दूरी होती है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल
0: रिश्ते की नींव सच्चे प्रेम पर टिकी होती है, हम सभी भी जानते हैं। अगर किसी रिश्ते में प्रेम है तो वो कठिनाई को पार कर सकता है। श्रोताओं, पति पत्नी के बीच समझ, दोस्तों के बीच विश्वास और परिवार में एकता, ये सब सच्चे प्रेम के कारण ही संभव है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं मनीषा और कशिश, तो हम उसके लिए त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। निभाने के कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि रिश्ते निभाने के लिए प्रेम जरूरी है, जीतने के लिए नहीं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब प्रेम और अहंकार के बीच संघर्ष होता है।
0: बिल्कुल
1: उदाहरण के लिए

0: तो संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। श्रोता साथियों, इतिहास और समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रेम ने अहंकार को हराया है। महान व्यक्तियों ने हमेशा प्रेम, विनम्रता और सेवा को महत्व दिया है।
1: बिल्कुल,
0: वही अहंकारी लोग अंत में हमेशा दुखद रहे हैं। श्रोता साथियों, सच्चा प्रेम और अहंकार जीवन के दो विपरीत पहलू हैं। जहां प्रेम हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, वहीं अहंकार हमें गिरा देता है। युवाओं के लिए समझना जागृति जी बहुत जरूरी है कि सफलता और खुशहाली का रास्ता प्रेम और विनम्रता से होकर गुजर

0: कोशिश में लगा रहता है।
1: जी हाँ,
0: आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों के रिश्ते हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। आप जैसे होते हैं वैसे ही आपके रिश्ते बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर आपके अंदर साथियों अहंकार ज्यादा है तो रिश्तों में दूरी बढ़ेगी, और

0: ये हमें मानसिक शांति देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। इसी के साथ साथियों आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन में सच्चा प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें जोड़ती है, संभालती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि अहंकार एक ऐसा आग है मनीषा, जो धीरे धीरे हमारे रिश्तों को जला देती है और हमें अकेला कर देती है। हमें समझना होगा कशिश कि जीत हमेशा झुकने में होती है, न कि ऊंचा दिखने में।
1: जी हाँ,
0: अगर हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाएंगे और अहंकार को त्याग देंगे तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल होगा बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत बनेंगे।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युवा डिजिटल दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर दिखावा, लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ ने अहंकार को बढ़ावा दिया है। लोग अपनी वास्तविक जिंदगी से ज्यादा अपनी छवि को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं।
2: बिल्कुल,
1: सच्चा प्रेम डिजिटल दुनिया से भी श्रोता साथियों जरूरी है, लेकिन वह दिखावे से अलग होता है। सच्चा प्रेम हमें दिखाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होता है। यह ऑनलाइन स्टेटस से नहीं बल्कि ऑफलाइन व्यवहार से पहचाना जाता है।
2: बिल्कुल,
1: युवा साथियों को यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर मिलने वाला ध्यान अस्थायी है, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन भर साथ निभाते

0: कार।
1: जी हाँ,
0: प्रेम हमें जोड़ता है, संवारता है और एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है, जबकि जो अहंकार है वो हमें तोड़ता है, दूर करता है और धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट को ही खत्म कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए युवा साथियों, हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी झुकना भी जरूरी होता है।
1: जी हाँ,
0: हर बात पर अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं है, कभी किसी की बात समझना भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: और सबसे जरूरी रिश्ते में से नहीं हम से चलते हैं।
1: जी
0: युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख यही होगी जागृति जी, कि अपने आत्मसम्मान को बनाए

0: को। जी हाँ, इसलिए कहा गया है कि अहंकार से ऊपर उठिए, प्रेम को अपनाइए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलों को जीतने में है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर

0: गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातचीत रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ से जाने की अनुमति।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज का युग प्रगति और विकास का युग है श्रोता साथियों, लेकिन इसी विकास के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है और वो है बढ़ती जनसंख्या।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना केवल एक संख्या नहीं है बल्कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जमीन, पानी और भोजन, ऊर्जा, रोजगार जैसे संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि संख्या बढ़े तो सोच भी बढ़ती है, तभी संसाधन सुरक्षित रहते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना मनोरंजन के लिए हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव को लेकर।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जनसंख्या भी निरंतर बढ़ती रही है। जहाँ एक ओर जनसंख्या किसी देश की शक्ति और श्रम बल का प्रतीक होती है, वहीं दूसरी ओर अनियंत्रित और तीव्र जनसंख्या वृद्धि जो है वो कई गंभीर समस्याओं को जन्म देती है।
0: जी हाँ,
1: आज विश्व के अधिकांश देशों, विशेषकर विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसका सबसे अधिक प्रभाव प्राकृतिक और मानवीय निर्मित संसाधनों पर पड़ता है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि यानी कि किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या का लगातार बढ़ना। साथियों, भारत जैसे देश में समस्या और भी गंभीर है, यानी कि हमारे देश में समस्या गंभीर है क्योंकि यहाँ संसाधन सीमित है और जनसंख्या विशाल। आज भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल हो चुका है।
1: जी जी,
0: हम देखते हैं अंजलि कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँव में भी इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: हर जगह भीड़ होती है, संसाधनों की कमी होती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। कहा गया है कि बढ़ती भीड़ का बोझ बढ़े, संसाधन फिर कैसे सबके लिए सजे, यानी कि श्रोताओं, अगर ऐसे ही भीड़ बढ़ती गई तो संसाधन कैसे मिलेंगे सबको।
1: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि संसाधन वे साधन है जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अगर प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो जल, वायु, भूमि, वन और खनिज। मानव निर्मित संसाधनों की बात करें तो उद्योग, मशीनें, परिवहन और तकनीक। श्रोता साथियों, इन सभी संसाधनों की एक सीमा होती है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि अनियंत्रित है जिससे असंतुलन पैदा होता है। हम देखते हैं जागृति जी की बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा और जागरूकता की कमी, गरीबी और अशिक्षा, बाल विवाह और पारंपरिक सोच, परिवार नियोजन के साधनों का कम उपयोग और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार से मृत्यु दर की कमी होती है। संसाधन पर कई चीजों के कारण दबाव पड़ता है जिसका प्रभाव ये होता है कि जल संकट पैदा होता है। श्रोता साथियों, बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है, नदियाँ, झीलें, भूजल स्तर तेजी से घट रहे हैं और कई क्षेत्रों में पानी पीने की समस्या भी गंभीर हो चुकी है।
0: बिल्कुल,
1: अधिक जनसंख्या के लिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन खेती योग्य भूमि सीमित है जिससे खाद्यान्न की कमी और महंगाई भी बढ़ रही है।
0: जी हाँ अंजलि, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन को लेकर, तो श्रोताओं, आपको कहना चाहेंगे कि संसाधन वे सभी साधन हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि पानी, जंगल, खनिज, भूमि, ऊर्जा, ये संसाधन सीमित है और इनका संतुलित उपयोग ही हमें भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो इन संसाधनों की मांग भी तेजी से बढ़ती है।
1: जी जी,
0: परिणाम स्वरूप हम देखते हैं अंजलि कि संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन होता है जिससे उनका समाप्त होना तय हो गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जैसे कि अशिक्षा और जागरूकता की कमी होती है, बाल विवाह और जल्दी विवाह करना भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है।
1: जी जी,
0: स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जिससे मृत्यु दर कम हुई हो, परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता, श्रोता, इन कारणों से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाता और संसाधन पर दबाव बढ़ता जाता है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, हम देखते हैं कि खेती और उद्योग के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसके कारण जंगल कट रहे हैं और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। श्रोता साथियों, अधिक लोग मतलब अधिक वाहन, अधिक उद्योग और अधिक कचरा, इससे वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: जब जनसंख्या अधिक होती है जागृति जी, और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है जिससे गरीबी और सामाजिक असमानता बढ़ती है। कोयला, पेट्रोल, गैस जैसे ऊर्जा स्रोत सीमित है, बढ़ती मांग के कारण ये तेजी से समाप्त हो रहे हैं। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बढ़ती जनसंख्या केवल संसाधनों पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी असर डालती है।
0: जी हाँ,
1: जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कमजोर पड़ती हैं, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार होता है, अपराध दर में वृद्धि होती है और जीवन स्तर गिरता है।
0: बिल्कुल अंजलि, और इसी के साथ जैसे कि हम जनसंख्या वृद्धि और संसाधन की कमी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही हमारी बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: कि संसाधनों पर बढ़ते दबाव के क्या प्रभाव होते हैं। यहीं श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि शहरों में अधिक जनसंख्या के कारण भीड़, ट्रैफिक, प्रदूषण और आवास की समस्या बढ़ती है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, इनके समाधान के कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाने होंगे, जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश हर घर तक पहुंचाना जरूरी है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलती है। रेडियो, टीवी और सामाजिक माध्यमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पानी बचाना, बिजली बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना भी जरूरी है। जागृति जी कहना चाहेंगे कि सरकार को सख्त और प्रभावी नीतियाँ लागू करनी चाहिए और सरकार करती भी है ऐसा विकास जो वर्तमान जरूरतों को पूरा करे लेकिन भविष्य को नुकसान न पहुंचाए।
1: बिल्कुल, इसी के साथ साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि इसके कुछ समाधान के उपाय हैं, जैसे कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूक करना जरूरी है। शिक्षा से ही सोच में बदलाव आता है। हम कह सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या कोई छोटी समस्या नहीं है अंजलि, बल्कि हमारे भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि आज हम इस पर ध्यान नहीं देंगे श्रोताओं, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमें समझना होगा श्रोताओं कि संसाधन सीमित है और उनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए हम सभी को मिलकर जागरूक होना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा।
0: जी हाँ।
1: और संसाधनों का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि कहा गया अंजल

0: हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है श्रोता साथियों कि वह संसाधनों का सही उपयोग करे।
1: बिल्कुल,
0: छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर बढ़ता दबाव आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
1: जी हाँ।
0: यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और उनका विवेकपूर्ण उपयोग हमारी जिम्मेदारी है। समाज, सरकार और प्रत्येक व्यक्ति मिलकर प्रयास करेंगे तो जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित हो सकता है और इसी के साथ हम एक स्वस्थ, समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि बढ़ती जनसंख्या केवल आंकड़ों की समस्या नहीं है श्रोताओं, ये हमारे अस्तित्व, हमारे भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों के सपनों से जुड़ा हुआ सवाल है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आज हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं श्रोताओं जब संसाधनों की कमी हमारे जीवन को कठिन बना देगी। पानी के लिए संघर्ष, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा और स्वच्छ हवा के लिए तरसना हमारी मजबूरी बन जाएगा।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अभी भी समय है, बदलाव की शुरुआत आज, अभी और यहीं से हो सकती है श्रोताओं। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, जब हर परिवार संतुलन अपनाएगा और जब समाज मिलकर जागरूकता फैलाएगा तभी इस समस्या का हल संभव है।
0: जी
1: याद रखिए श्रोताओं, विकास वही है जो संतुलन के साथ हो। अगर जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बिगड़ गया तो सारी प्रगति बेकार हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरी है अंजलि कि हम सोच समझकर कदम उठाएं और एक जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि श्रोताओं संख्या नहीं संतुलन जरूरी है, भविष्य नहीं आज की जिम्मेदारी पूरी है। जो आज संभल जाए वही कल सवार पाएगा, संसाधनों को बचाकर ही मानव जीवन मुस्कुराएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: जब तक हम अधिक पानी की मानसिकता से हटकर संतुलित और आवश्यक उपयोग की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। साथ ही श्रोता साथी, यह भी जरूरी है कि हम विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में न देखें, बल्कि उसे सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़कर समझें।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा विकास वही है जिसमें संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे। श्रोता साथियों, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हमें आज ही छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जिससे परिवार नियोजन को अपनाना, शिक्षा को प्राथमिकता देना, पानी और ऊर्जा की बचत करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना, ये छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर बड़े बदलाव का आधार बनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ये कहना उचित होगा जागृति जी कि यदि हम समय रहते जागरूक होकर संतुलन की दिशा में प्रयास करें तो हम न केवल वर्तमान समस्याओं को कम कर सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध दुनिया भी सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: यही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है और भविष्य के प्रति हमारा कर्तव्य भी है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते

0: आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम

0: हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में हाजिर होते हैं तो हम बात करते हैं हमारे तन मन और सेहत को लेकर। आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी एक नया विषय जुड़ने जा रहा है जो कि बहुत खास है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा चौंकाने वाला भी हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिजिटल फास्टिंग को लेकर। क्या सच में मोबाइल से दूरी बनाकर हम अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं मनीषा कि आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं।
0: जी हाँ,
1: सुबह उठते ही फोन देखना, रात को सोने से पहले फोन चेक करना, खाली समय हो तो फोन, बोरियत हो तो फोन। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये डिजिटल दुनिया धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है? क्या थोड़ी दूरी बनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? आज इन सभी सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे दोस्तों।
0: जी हाँ कशिश,
1: और हम बात करेंगे कि डिजिटल फास्टिंग जरूरी क्यों है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल फास्टिंग से ठीक रहेगी सेहत को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और विभिन्न एप्स ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन श्रोता साथियों, इसके साथ ही हमारी दिनचर्या, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहराई से प्रभाव डाला है।
1: बिल्कुल,
0: सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले तक स्क्रीन से चिपके रहना श्रोता साथियों आज आम आदत बन चुकी है। ऐसे में कशिश, डिजिटल फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, डिजिटल फास्टिंग का अर्थ ही निश्चित समय के लिए मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, सोशल मीडिया से पूरी तरह से या आंशिक रूप से दूरी बनाना, ताकि श्रोता साथी मन और शरीर को आराम मिल सके। यह ठीक वैसे ही है श्रोता साथियों जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास करते हैं, उसी प्रकार मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए डिजिटल उपवास भी आवश्यक है। कशिश
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, जैसे कि हम शरीर को डिटॉक्स करने के लिए उपवास करते हैं, ठीक वैसे ही दिमाग को आराम देने के लिए हम डिजिटल फास्टिंग कर सकते हैं। यह पूरी तरह छोड़ना नहीं श्रोता साथियों, बल्कि संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा उपाय है, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में डिजिटल लाइफ का बढ़ता असर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, आज की जिंदगी में डिजिटल डिवाइस सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक आदत और लत बन चुके हैं हमारी। ऐसे में हर 5 मिनट में फोन चेक करना, बिना वजह स्क्रॉल करते रहना, नोटिफिकेशन आते ही ध्यान भटक जाना, ये सब श्रोता साथियों धीरे धीरे हमारे दिमाग पर असर डालते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इससे हमारा ध्यान कम होता है, याददाश्त कमजोर होती है और मानसिक थकान भी बढ़ती है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि डिजिटल फास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना बंद कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ श्रोता साथियों सीमित समय तक करता है। यह समय कुछ घंटों का, एक दिन का या कुछ दिनों का भी हो सकता है। मुख्य रूप से कशिश, हम देखते हैं कि यह मानसिक तनाव को कम करता है, ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को भी बढ़ाता है, नींद में सुधार करता है और वास्तविक जीवन से संबंधों को मजबूत करता है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि आज के युवा और बच्चे सबसे ज्यादा डिजिटल उपकरणों के शिकार हो रहे हैं। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, लगातार नोटिफिकेशन चेक करना, गेम्स और वीडियो पर समय बिताना, श्रोता साथियों ये सब धीरे धीरे एक लत का रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वो कैसे श्रोता साथियों? तो सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: हम खुद की तुलना उनसे करने लगते हैं, जिससे हम चिंता और तनाव में आ जाते हैं। साथ ही इससे नींद की समस्या भी होती है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, रात को देर तक मोबाइल चलाने से हमें नींद नहीं आती, जिससे मनीषा नींद की गुणवत्ता खराब होती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से अकेलापन बढ़ता है और मन हमारा उदास रहता है, जिसके कारण हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमारी आपसे चल रही हैं
1: जी,
0: कि किस प्रकार से डिजिटल फास्टिंग करने से हम अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं और हमारी सेहत बेहतर भी रहेगी।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे डिजिटल चीजों का ज्यादा उपयोग करने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहीं अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए मनीषा, तो देखते हैं कि डिजिटल लत सिर्फ दिमाग ही नहीं शरीर को भी प्रभावित कर सकती है।
1: जी बिल्कुल कशिश,
0: इससे हमें आंखों की समस्या हो सकती है, जैसे कि आंखों में जलन, सूखापन, धुंधला दिखाई देना, साथ ही गर्दन और पीठ दर्द भी हो सकता है। जैसे कि लंबे समय तक झुककर बैठने से गर्दन में या फिर कह सकते हैं कि पीठ में दर्द होता है, जिससे हमारी स्थिति भी गलत हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही मोटापे की समस्या भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ज्यादा देर तक बैठते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं तो इससे शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: जिससे हमारा मोटापा बढ़ता है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि रात को सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करने से नींद पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी कि श्रोता साथियों ब्लू लाइट नींद के हार्मोनों को प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल फास्टिंग अपनाने से श्रोता साथियों हमें नींद जल्दी आती है, गहरी नींद आती है और सुबह हम तरोताजा महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि आज के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। डिजिटल फास्टिंग से श्रोता साथियों परिवार के साथ समय बढ़ता है, बातचीत और समझ भी बेहतर होती है, साथ ही भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है।
0: जी,
1: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि डिजिटल उपकरणों के कारण बार बार हमारा ध्यान भी भटकता है। अगर हम डिजिटल फास्टिंग का उपयोग करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है, काम जल्दी और बेहतर होता है और साथ ही हमारी पढ़ाई में भी सुधार होता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। साथ ही रिश्तों पर असर की बात करें तो डिजिटल दुनिया हमें जोड़ती जरूर है साथियों, लेकिन असल जिंदगी के रिश्तों को ये कमजोर भी करती है। हम देखते हैं कि परिवार के साथ समय कम बिताना, बातचीत कम होना और इससे भावनात्मक दूरी भी बढ़ जाती है।
1: जी हाँ,
0: कई बार तो श्रोता साथियों साथ में बैठकर भी अलग अलग स्क्रीन में खोए रहते हैं।
1: जी जी,
0: हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ता है और इसके लिए उपाय सिर्फ एक ही है कि हम डिजिटल फास्टिंग करें।
1: जी
0: दोस्तों, डिजिटल फास्टिंग हमारे जीवन में संतुलन लेकर आती है, जैसे कि हमारे दिमाग को आराम मिलता है, ध्यान हमारा बढ़ता है, नींद सुधरती है और रिश्ते भी इससे मजबूत होंगे। ये हमें ये याद दिलाती है मनीषा कि असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को बताएं कि डिजिटल फास्टिंग भी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, अचानक पूरा दिन मोबाइल छोड़ना मुश्किल हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: शुरुआत में 1-2 घंटों से शुरू करें, साथ ही समय निर्धारित करें, सुबह उठते ही 1 घंटे तक मोबाइल न देखें, सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहें। साथ ही श्रोता साथियों अनावश्यक नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं तो हमें बार बार मोबाइल भी चेक नहीं करना है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही श्रोता साथियों हमें किताबें पढ़नी है, योग करना है, व्यायाम करना है, परिवार के साथ समय बिताना है और प्रकृति के साथ समय बिताना है, जिससे श्रोता साथियों हम डिजिटल फास्टिंग को अपना पाएंगे और साथ ही मोबाइल से दूर रह पाएंगे, जिससे हमारा मानसिक तनाव और कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें संतुलन बनाने की, तो दोस्तों डिजिटल फास्टिंग का मतलब तकनीक से भागना नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करना है। हम देखते हैं कि आज के समय में डिजिटल से दूर रहना संभव नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ऐसे में आपसे कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया आपकी ताकत है, लेकिन अगर सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो यही आपकी कमजोरी भी बन सकती है।
1: जी हाँ,
0: अपने समय का मूल्य समझे साथियों और स्क्रीन से ज्यादा जीवन को महत्व दे। सुबह उठते ही फोन न देखे, सोने से पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दे जैसा कि आपने बताया मनीषा, और अपने दोस्तों से आप मिले, प्रकृति के साथ भी आप समय बिता सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा उपाय है जिससे आप अपने जीवन में डिजिटल फास्टिंग को अपना सकते हैं। हम कह सकते हैं मनीषा श्रोता साथियों से कि डिजिटल फास्टिंग कोई ट्रेंड नहीं बल्कि एक जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: ये हमें ये सिखाती है कि जीवन सिर्फ स्क्रीन में नहीं बल्कि रिश्तों, अनुभवों और भावनाओं में भी होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम थोड़ा समय खुद को दे साथियों तो हम ज्यादा खुश, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा संतुलित जीवन जी सकते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं आज के तेज रफ्तार डिजिटल युग में हमें यह समझना होगा कि तकनीकी हमारे लिए है, हम तकनीकी के लिए नहीं।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम समय समय पर डिजिटल फास्टिंग को अपनाते हैं तो हम अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही श्रोता साथियों डिजिटल फास्टिंग आज की आवश्यकता बन चुकी है, यह केवल एक आदत नहीं है कशिश बल्कि यह एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक कदम है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं श्रोता साथियों, मानसिक शांति शांति पाना चाहते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो डिजिटल फास्टिंग को अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल,
1: थोड़ा समय खुद को दे, थोड़ा समय अपनों को दे और थोड़ा समय बिना मोबाइल के भी जी कर देखें। आप पाएंगे कि असली खुशी स्क्रीन के बाहर है।
0: जी हाँ मनीषा, दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया में रहिए लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। कभी कभी फोन को साइड में रख के देखिए और जिंदगी को जीना सीखिए साथियों।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि यही एक स्वस्थ जीवन जीने का सही तरीका है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से डिजिटल फास्टिंग को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर न अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
0: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार। बिल्कुल सही, सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार। वागधारा संस्था और वागड़ रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वारा अमर हित्ता भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बोनो, आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: तो भाई बोनो लेने हाजिर थे गया हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने खाते मनीषा बोन। आज कार्यक्रम में अपने भाई बोनो की बातचीत नो विषय है की अपने गाँव में पलायन की समस्या केम वधी रही है, आना हूँ कारण है, समाधान ना हो पाए थी शके। आपणे देखो हो कि आपणा जे भारत देश है एनी पहचान आपणे गांव में से है, पण आजना टाइम में गांव जे है ई धीरे धीरे खाली थाता जई रहे है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ने बेहतर जीवन की तलाश में मनकजे है आपणे शहर नी आड़ी जई रहे है। आ पलायन कई मजबूरियों ने कारण थई शके, जेने कारण आपणे देखो हो कि आपणे जे गांव है एनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जी चीजें हैं ये बदली रही हैं। गांव कमजोर पड़ी रहे हैं, शहरों में बोझ वधी रू है। तासे अपने कार्यक्रम में ये जानूंगा कि पलायन केम वधी रू है ने आने अपने हरते संतुलित करी शका।
0: होवे अंजलि बोन, तो आना विषय माते अपने भाईन बोनों कति घना अक्कानी वाते थेंगा। अभी हमला आ गीत ने मोरे करो अपनी बातें।
1: होवे तो भाईन बोनो, आप हमर तरह सु आपलो रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: बहन बोनो और गीत बाद आप सभी ने फिर स्वागत करे हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में। जिम की भाई बोनो गीत थे की पहले विषय बताड़ी हुए तू गामना लोग पलायन करे है विने हो समस्या है न हो समाधान है। अंजलि बोना अपन देखो हाँ कि आपने भारत जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। आए सदियों खती आपने देश ने आत्मा रही है गांव। गांव में रेवा वाला मन को सांस्कृतिक संसाधनों माते आधारित अपने जीवन जीवे हैं। वे देश ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान आले हैं। अंजलि बोना अपन देखो हाँ कि गंभीर समस्या उभरी ना अपने हमो आवी है वह अपने गाँव न लोग शहर में पलायन कर रही है। आ पलायन भाई बोनों केवल रोजगार ने तलाश तक सीमित नहीं है बल्कि एने पसाड़ी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक ने सांस्कृतिक कारण भी जुड़िया करता है। गामन खाली था वो अंजलि बोन शहरों ने और बढ़वानो दबाव आ एक चुनौती बनी चुकी है। अंजलि बोन अपन देखा है कि आप गाम ने मुझे मन कही भी एक जगह खत बीजे जगह जाए ही वन ने अपन पलायन कह गाँव न लोग पलायन करी ही केम के वन ने रोजगार नहीं मलतु है बराबर आई नहीं मलती है ने बराबर शिक्षा नहीं मिलती है। इन कारण खाती भी अपन देखा हाँ कि घना अकन लोग हैं जी अपने गांव छोड़ी ने शहर ने ओर जाई रही हैं।
1: हवे मनीषा बोन अपने देखा हाँ कि आज के टाइम में गांव में घना एवं युवा वर्ग है जे तेजी तक की अपने शहर में आगे सी रहे हैं। खेत खाली रह रहे हैं घर में बुजुर्ग ने सोरस रह जाए हैं। गाँव की आर्थिक गतिविधियां धीमे पड़ी गई है ने सामुदायिक जीवन जो है कमजोर थे गए हैं। भाई बोनो घना एवं परिवार है ई सालों तक की अलग रह गए हैं। कमावा वाला जो है ई शहर रहे हैं परिवार गांव में अंत की सामाजिक ने भावनात्मक दूरी भी बढ़ी रही है। पलायन ना घना का कारण है जिनके रोजगार में अवसरों की कमी शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी खेती में वत्ती कठिनाइयां इन्हें साथ आधुनिक जीवन की चाह ये बुनियादी सुविधाओं की कमी इन्हें कारण आप देखो हो कि गाँव में जो मनक है ई शहर आड़ी सलसाए पर आज पलायन थी रू है आना घना का ना दुष्परिणाम है। आपने देखो हो कि आने कारण गांव की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी जाए है बुजुर्ग ने सोरा माते असर पड़े है। आपने देखो हो कि जे मनक है कमावा बाते सलू सगा ते जे घर ना गरीब ना मन कहे एना ना सेवा कौन करेगा इने साथे जे एना ना सोर रहे एना नी भणाई भी सूटी जा ई बाधित थी जा इने साथे आपने जे त्योहार है परंपराएं है सामूहिक गतिविधियां है ई कम थवा लगी गई है। क्योंकि जे मनक गाँव ते की बाते सलू जा ती हमेशा तावी नहीं सके ई छह महीना में सात महीना में कया त्योहार त्योहार आई वो कया बार त्योहार नहीं आवे ते इन्हें कारण आपने देखो हो कि आज चीजें हैं ई फीकी पड़ी साए हैं। इन्हें साथे आपने देखो हो कि शहरों में भीड़ बढ़ी रही है जेने कारण रोजगार आवास यातायात ने संसाधन माते दबाव बढ़ी रू है। आपने देखो हो मनीषा बोन घनी वक्त के घना एवं मजदूर है जिन्हें असुरक्षित काम भी मिले है जेने कारण एनों जो जीवन है ये असुरक्षित थी सा। आपड़े भाई बहनों ने प्लीज कहू चंगा कि आज समस्या वधी रही है आनु समाधान आपड़े करने से आनु समाधान होती नहीं आपड़े ने ये समस्या ने दूर करवो होगा।
0: हुवे अंजलि बोन आते आपे बताड़ियो कि आना हूँ कारण थे रही हूँ आस अगर भाईन बोने ने बताड़ो कि पलायन की समस्या रोकवा बदले अपन समाधान हूँ करी शकू ते भाईन बोने अपने गाँव में रोजगार ना अवसर है भी बढ़ावे है कुटीर उद्योग अपने बनाव वही हस्तशिल्प बुनाई डेरी मधुमक्खी पालन जेव कार्य ने प्रोत्साहन आलू है अपने ग्रामीण युवाओं ने कौशल हिकवा बल्दे भी वनने बढ़िया शिक्षा आलवी है। इन्हें साथे भयन बनो किसानों ने भी उचित मूल्य मलवो जुवे है आधुनिक खेती तकनीक नो उपयोग वनने करवो जुवे इन्हें साथे सिंचाई ने व्यवस्था है वेन भी बेहतर बनावी है। बहन बोनो अपने जैविक खेती करवी है एना खाती भी अपने पलायन लोग कम करेंगे ने आय भी अच्छे मिलेगा। एने साथे अंजलि बोन अपने गाँव में असल स्कूल ने कॉलेज भी स्थापित करवा जुवे डिजिटल शिक्षा ने बढ़ावो आलवो जुवे ने हाथे शिक्षा ने गुणवत्ता ने भी हदारवो जुवे ने संख्या भी बढ़ावी जुवे।
1: हवे मनीषा बोन अपने देखो हो कि अपने गाँव में सड़क बिजली इंटरनेट परिवहन व्यवस्था ने बेहतर करवो होगा रोजगार गारंटी योजना कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास योजनाएं से है इन्हों क्रियान्वयन अपने सरकार ने हौसले तरीका करवो होगा। इन्हें साथ गाँव में भी अवसर नी सोच जो है ये विकसित करनी होगा क्योंकि सब मना के मत सोचे कि गाँव में हूँ है अपने शहर में जाऊंगा ये वधारे पैसा कमाऊंगा आ करूंगा पहले करूंगा ये सब चीजें विचार करे है। आपने देखो हो कि गाँव में भी स्थानीय स्तर माते घना एवं रोजगार है जे करीने आपने अपनी आय वधावी शको इन्हें साथ अपने घर परिवार नु ध्यान राखी शको ने अपने जे सूर है इन्हों पोषण भी वधावी शको। पलायन रोकवु खाली सरकार नु काम नहीं भाई बोनो पंचायत स्वयंसेवी समूह युवा महिलाएं मिलीने स्थानीय स्तर माते बदलाव करी शके ग्राम सभा में रोजगार माते अपने चर्चा करवी होगा सामूहिक प्रयास तकी आपणे नाना उद्योग खुली शको अपने जे युवा भाई बहन है આપણને ગામમાં અવસર આલવા હોંગા તાકી એનાનું જે રુઝાન શહેર આદિ વર્દી રૂહે એકમ થઈ શકા
0: હવે
1: મેન્ડોનો આપણને હમસવું હોગા શહેર વિકાસનું એકમાત્ર રાસ્તો નથી ગામમાં ભી અસર પેદા થઈ શકે જે સમાધાન હૈ એ વિકાસ ભી હૈ આ સોચ આપણને અપનાવવી હોગા ગામમાં પલાયનની સમસ્યા જટિલ ઘણી હૈ પણ આનો સમાધાન આપણે બદલે સંભવ હૈ
0: યદી
1: આપણે ગામ વિસ્તાર માટે રોજગાર શિક્ષા સ્વાસ્થ્ય સુવિધાને મજબૂત કરા તો આપણે જે ગામ હૈ એ શ્રેણીને સન્માનજનક જે જીવન હૈ આપણે જીવી શક પલાયનને પૂરી તરીકાથી રોકવું તો સંભવ નથી મનીષા બોન પણ આપણે દેખો કે ઘણા એવા ઉપાય હે એ કરીને આપણે આને કમજોરો કરી શક
0: જે
1: વખત ગામ મજબૂત હોગા તો દેશનો સંતુલિત વિકાસ ભી સંભવ થઈ શકે ગામનો વિકાસ જ અસલી વિકાસ કહેવાય હૈ
0: હોવી અંજલિ બોન એની સાથે આપણે દેખા કે આપણે ગામના જે યુવા હે વે આપણે દેશના ભવિષ્ય હે અગર વે ગામમાં સ્ત્રીની ગામનો વિકાસ કરેગા અને યોગદાન આરેગા ત્યાં પલાયનની સમસ્યા કાફી હદ તક ભી કમ કરી શકે એને સાથે યુવા નવા વ્યવસાયને શરૂ કરી શકે હે ડિજિટલ તકનીકીનો ઉપયોગ કરીને ગામને આગળ વધાવી શકે હે શિક્ષાને જાગૃતતા ફેલાવીને ભી આ સમસ્યાને રોકી શકીએ એની સાથે આપણે બોનેને ભી આત્મનિર્ભર બનવું જોઈએ અગર વે આત્મનિર્ભર બનેગા તો આ પલાયન જેવી સમસ્યાને ભી રોકી શકેગા વણને સ્વયં સહાયતા સમૂહથી ભી બઢાવો લેવો હે આપણે ઘરને બોને હે વણને છોટો છોટો વ્યવસાય શરૂ કરવો હે વણામાં કામ કરવું હે કે વણા ખાતે ભી વણને આય કમાઈ શકીએ અને વણા ખાતે ભી પલાયનને રોકી શકીએ આ હોત રોજગાર હે વિના અવસર ભી પેદા કરી શકીએ આ સમસ્યાને હલ કરી શકીએ એની સાથે અંજલિ બોન આપણે દેખા કે આજના ટાઈમમાં તકનીકીનો વિકાસ ભી ખૂબ જ્યાદા બઢી ચુ હે આજે આપણે દેખા કે ઓનલાઈન અવસર બઢી જાય હે ઓનલાઈન જ કામ થઈ જાય હે એ કોર્સને માધ્યમ કરતી ગ્રામીણ ઉત્પાદની વર્ણન બજાર મળી જાય હે ડિજિટલ સેવાને શિક્ષા અને સ્વાસ્થ્યની સુવિધા ભી આપણે દેખા ઓનલાઈન જ આપણને દેખવા મળી જાય વેનસ કરતી આપણને સબ ખબર પડી જાય હે
1: હવે મનીષા બોન આપણે સહી કીધું ઘણી પ્રકારથી કે આપણે કહી શકો આપણા બહેન બોનોને કે આપણને આટલી આખી સુવિધા આપણા ગામની મળી શકે અગર આપણે પ્રયાસ કરવા તો બહેન બોનો આશા કરો હો કે આ હંગરી વાત આપને ગમી હોંગા કેમકે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે મનીષા બોન આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટ પડવાનો
0: હવે
1: તો સૂટ તો પડ પણ સાથે પહેલા આપણે ભાઈ બોનોને કાર્યક્રમનું પતું વધારતો તાકી આજનો આ કાર્યક્રમ એને કેવું લાગ્યું એની બારામાં એ રાય સુઝાવ આપણને આલી શકીએ આપણે અણા પતા માટે
0: હવે ભાઈ બોનો અમારું પતું હે કાર્યક્રમ સમસ્યા સમાધાન વાગડ રેડિયો 90.8 FM મુકામ પોસ્ટ કુપડા વાગધારા કેમ્પસ બાંસવાડા રાજસ્થાન અમારું પિનકોડ નંબર હે 327001 હજી વધારે જાણકારી બદલે આપ મને ફોન કરી શકો અમારા આ ફોન નંબર માટે અમારો ફોન નંબર હે 9460051234
1: એની સાથે બહેન બોનો આપ અમારી ઈમેલ આઈડી લખી લો એને માધ્યમથી ભી આપ આપણા રાય સુઝાવ અમને આપી શકો અમારી ઈમેલ આઈડી હે radio@vagdhara.org
0: તો ભાઈ બોનો ફેરે મલંગા અણાસ કાર્યક્રમમાં અણાસ ટેમમાં એક નવા વિષયની હાથે તાર હુદી
2: રામ રામ રામ રામ

0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी बिल्कुल
0: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि हमारी आलोचना को सुनना क्यों जरूरी है।
1: जी
0: हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर सीखता है, आगे बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: बिल्कुल
0: जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कशिश कि लोग उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे और उसके काम को सहारे।
1: जी।
0: लेकिन जीवन केवल प्रशंसा से नहीं चलता है कशिश, बल्कि कई बार हमें आलोचना भी सुननी पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: आलोचना सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि जब कोई हमारी कमियों की ओर इशारा करता है तो हमें बुरा लग सकता है।
1: जी।
0: मन आहत हो सकता है, गुस्सा आ सकता है या सामने वाले को गलत समझ सकते हैं। फिर भी दोस्तों सच यह है कि आलोचना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल
0: यदि यही दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम देखते हैं कि आलोचना हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद कर देती है।
1: जी जी।
0: यह हमें अपनी गलतियों को समझने, सोचने और सुधारने की प्रेरणा देती है। दोस्तों कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति केवल तारीफ सुनना चाहता है और आलोचना से भागता है, वह अपने विकास के रास्ते बंद कर देता है।
1: बिल्कुल
0: वही जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से आलोचना सुनता है वह जीवन में अधिक परिपक्व और सफल भी बन पाता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और गीत से पहले विषय भी बता चुके हैं कि बात कर रहे हैं कि हमारी आलोचना को सुनना क्यों जरूरी है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अंजलि जी, वह समाज में रहकर सीखता है, आगे बढ़ता है और व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: बिल्कुल।
0: और जीवन में हर व्यक्ति ये चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके कार्यों की सराहना करें और उसे भी सम्मान मिले।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दोस्तों आपको बताएं तो जीवन केवल प्रशंसा से नहीं चलता। जहाँ प्रशंसा हमें उत्साह देती है, वहीं आलोचना श्रोता साथियों हमें हमारी कमियों का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल।
0: कह सकते हैं कि आलोचना सुनना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जब कोई हमारी गलतियों की ओर संकेत करता है तो हमें बुरा लग सकता है।
1: बिल्कुल।
0: मन दुखी हो सकता है या गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन यदि हम शांत मन से सोचे श्रोता साथियों, तो हम ये पाएंगे कि आलोचना वास्तव में हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि आलोचना का अर्थ केवल किसी की बुराई करना नहीं है। आलोचना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के काम, व्यवहार या सोच की कमियों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आलोचनाएं दो प्रकार की होती है, कभी सकारात्मक भी हो सकती है तो नकारात्मक भी हो सकती है।
0: जी हाँ,
1: अगर यही बात करें श्रोता साथियों सकारात्मक आलोचना की, तो जब कोई व्यक्ति हमारी भलाई के लिए हमारी गलतियों को बताता है ताकि हम सुधार कर सके, तो वो सकारात्मक आलोचना कहलाती है।
0: जी।
1: लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल अपमान करने, नीचा दिखाने या मन दुखाने के उद्देश्य से आलोचना करता है तो वह नकारात्मक आलोचना होती है। श्रोता साथियों, जीवन में हमें दो प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: समझदारी इसी में ही है कि हम अपने फर्क पहचाने और सही बात को अपनाए। क्योंकि हम देखते हैं कशिश की आलोचनाएं जो होती हैं वो दोनों ही हमारे लिए सही होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई नकारात्मक आलोचना दे तो उसको लेकर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो हमें नकारात्मक आलोचना कर सकते हैं हमारी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो सकारात्मक आलोचना है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो हमें हमारे कार्यों के प्रति सजग करती है और हमारी गलतियों को हमें बताती है। तो श्रोता साथियों, यही अब जानना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि आलोचना सुनना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात आती है कशिश की, आलोचना हमें अपनी गलतियों का एहसास कराती है। कई बार जो व्यक्ति होता है वह अपनी कमियों को खुद नहीं देख पाता, उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वही सही है। ऐसे समय में दूसरों की राय हमें हमारे भूलों का एहसास कराती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में गलती कर रहा है तो शिक्षक उसे सुधारते हैं, तो वह आलोचना ही उसे बेहतर बनाती है।
0: जी।
1: यदि कोई कलाकार अपनी कला में कमी नहीं पहचानेगा कशिश, तो वह आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए आलोचना हमारे लिए एक दर्पण की तरह कार्य करती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ अगर देखें तो जैसा कि आपने बताया कि मनुष्य स्वयं हमेशा स्वयं को सही मानता है, कई बार हमें अपने श्रोता साथियों गलतियां नहीं दिखाई देती।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में आलोचना आईने की तरह हमारे लिए काम करेगी, क्योंकि जैसे दर्पण हमें अपना चेहरा दिखाता है, ठीक वैसे ही आलोचना हमारे व्यक्तित्व की कमियों को उजागर करती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है और शिक्षक उसे टोकते हैं, तो वह आलोचना उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होगी। अंजलि जी।
1: जी हाँ।
0: और यदि माता पिता बच्चों को अनुशासन सिखा रहे हैं तो वह भी एक प्रकार की सकारात्मक आलोचना ही हुई। यदि हम इन बातों को समझ ले साथियों, तो आलोचना हमें बोझ नहीं बल्कि मार्गदर्शन की तरह सामने आएगी।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातें चल रही है। आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें श्रोता साथियों, तो व्यक्तित्व विकास में मदद मिलती है अगर हम आलोचना सुनने की हिम्मत रखते हैं तो।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, जो लोग आलोचना को शांत मन से सुनते हैं वे धीरे धीरे अपने परिपक्व बनते जाते हैं, वे अपनी आदतों में सुधार करते हैं और अपने व्यवहार को बेहतर बनाते हैं। कशिश, एक अच्छा वक्ता, लेखक, शिक्षक या नेता वही बन सकता है जो लोगों की प्रतिक्रिया को समझे। यदि व्यक्ति हर आलोचना पर नाराज हो जाए तो वह सीखना बंद कर देता है। इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि अहंकार कम होता है। अत्यधिक प्रशंसा कई बार व्यक्ति में अहंकार पैदा कर देती है, उसे लगने लगता है कि वह हमेशा सही है। आलोचना हमें जमीन से जोड़े रखती है, यह हमें याद दिलाती है कि हर इंसान में सुधार की गुंजाइश होती है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है वह अधिक विनम्र और समझदार भी बनता है। इसके साथ कशिश, हम देखते हैं कि सफलता की राह कोई आसान नहीं होती है। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में आलोचनाएं सुनी है। खिलाड़ी, वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, नेता, सबको किसी न किसी मोड़ पर लोगों की बातें सुननी ही पड़ी है, लेकिन उन्होंने आलोचना से हार नहीं मानी। उन्होंने उसे सुधार का अवसर बनाया, यही कारण है कि वे आगे बढ़ पाए। यदि किसान अपनी खेती की गलतियों पर सलाह न सुने तो फसल कैसे सुधरेगी? यदि डॉक्टर नई जानकारी और सुझाव न माने तो इलाज कैसे बेहतर होगा?
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में सुधार तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानना शुरू कर दे। क्योंकि साथियों, जो व्यक्ति आलोचना से भागता है वह अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन वही जो व्यक्ति आलोचनाओं को स्वीकार करता है वह निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है। अंजलि जी, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने आलोचना से ही तो सीख ली है।
0: बिल्कुल।
1: वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और नेताओं ने भी अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए साथियों लोगों की प्रतिक्रियाओं को महत्व दिया। यदि वे केवल प्रशंसा सुनते रहते तो शायद इतनी ऊंचाइयों तक आज नहीं पहुंच पाते।
0: बिल्कुल।
1: देखते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी अपने कोच की आलोचना सुनता है तभी वो अपनी तकनीक सुधार पाता है।
0: बिल्कुल।
1: एक अच्छा गायक अपनी कमियों पर मेहनत करता है तभी उसकी कला निखरती है। इस तरह दोस्तों, हर व्यक्ति को आलोचनाओं को विकास का एक अवसर मानना चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि परिवार और समाज में कई बार लोग हमारी आदतों या व्यवहार की ओर ध्यान दिलाते हैं। यदि हम हर बात पर गुस्सा हो जाएं तो रिश्तों में दूरी आने लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यदि हम धैर्य से सुने और समझे तो आपसी समझ बढ़ती है। आलोचना सुनने की आदत श्रोता साथियों रिश्तों में संवाद को मजबूत करती है। इसलिए कहना चाहेंगे कि आलोचना सुनते समय हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि जब कोई हमारी गलती बताता है तो हमें उसे गलत नहीं समझना है बल्कि हमारी इज्जत समझ लेना है। हम उस चोट को भी आसानी से सह लेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सी बार गुस्सा भी आ जाता है लेकिन हमें कोई तुरंत प्रक्रिया नहीं देनी है और खुद किसी भी प्रकार से कोई बहस शुरू नहीं करनी है। हमें खुद उसे सोचना है, विचार करना है कि कहाँ गलती हुई है। इसी के साथ दोस्तों कहना चाहेंगे कि आलोचना को सही तरीके से सुनने के कई ऐसे तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, जैसे कि शांत रहना सीखे। यानी कि कशिश, आलोचना सुनते समय तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले पूरी बात सुननी चाहिए। कई बार सामने वाला सही बात कह रहा होता है। इसी के साथ सही और गलत में फर्क करें, यानी कि हर आलोचना सही नहीं होती। इसलिए समझना जरूरी है कि कौन सी बात हमारे सुधार के लिए और कौन सी केवल नकारात्मक है।
1: बिल्कुल।
0: अपनी गलतियों को हमें स्वीकार करना है क्योंकि गलती मान लेना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि साहस की निशानी है। जो व्यक्ति अपनी कमी स्वीकार कर लेता है कशिश वह जल्दी सीखता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि यदि किसी ने हमारे काम में कमी बताई है तो हमें सोचना चाहिए कि अगली बार कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है। तो आलोचना है वो हमें अलग अलग प्रकार की चीजें सीखने में मदद करती है।
1: बिल्कुल।
0: एक स्वस्थ समाज वही होता है श्रोता साथियों जहाँ लोग अपनी राय खुलकर रख सकें। यदि समाज में कोई गलती हो रही हो और लोग उसके बारे में बोलना बंद कर दे तो सुधार रुक जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: पत्रकार, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक समाज की कमियों की ओर ध्यान दिलाते हैं और यही आलोचना समाज को आगे बढ़ने में मदद करती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर हमारे दोस्तों से हम बात करें तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि कई बार हमारे अपने ही लोग हमारी गलतियों की ओर ध्यान हमें दिलाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि माता पिता, मित्र, गुरु या परिवार के सदस्य, ये सभी जब हमें टोकते हैं तो उसके पीछे चिंता और प्रेम छिपा हुआ होता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि साथियों हम हर बात को अपमान समझने लगेंगे तो रिश्तों में दूरी आने लगेगी।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने करीबियों की बात सुनता है और स्वयं में सुधार लाता है उसके रिश्ते अधिक मजबूत बनते हैं। अंजलि जी,
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, संवाद और समझदारी रिश्तों की नींव होते हैं और आलोचना को सही भावना से स्वीकार करना ही इन्हें और मजबूत करता है।
0: बिल्कुल कृषिश, आज के समय में सोशल मीडिया के कारण लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी की टिप्पणी या आलोचना उन्हें बहुत प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों और युवाओं को ये समझना चाहिए कि हर राय हमारे खिलाफ नहीं होती। कई बार लोग हमें बेहतर बनाने के लिए सुझाव देते हैं। यदि हम हर बात को मान समझेंगे तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। हमें आत्मविश्वास के साथ सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। श्रोता साथियों, कुछ लोग सोचते हैं कि आलोचना सुनने से आत्मविश्वास कम हो जाता है, लेकिन सच इसके उलट है। जो व्यक्ति आलोचना सुनकर भी अपने लक्ष्य पर डटा रहता है उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता है।
1: बिल्कुल।
0: आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कशिश कि हम खुद को हमेशा सही माने। असली आत्मविश्वास यह है कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करके भी आगे बढ़ सके।
1: जी हाँ।
0: आलोचना जीवन की वह आवाज है दोस्तों जो हमें रुककर खुद को देखने का अवसर देती है। यह हमेशा सुखद नहीं होती लेकिन अक्सर हमारे विकास का कारण बनती है।
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, जो व्यक्ति केवल प्रशंसा में जीना चाहता है वह धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है। वही जो व्यक्ति आलोचना को धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करता है वह जीवन में लगातार आगे बढ़ता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए दोस्तों कि हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती। कई बार वही बातें जो हमें सबसे अधिक चुभती है आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आलोचना से डरने की बजाय हमें उससे सीखने की आदत डालनी चाहिए। जीवन में सच्ची प्रगति उसी की होती है कशिश जो अपनी कमियों को सुनने का साहस रखता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से आलोचना सुनना हमारे लिए जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात करें कशिश, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस चीज को हम समझे। तो श्रोता साथियों, कई बार हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है
1: जी।
0: यही यदि कोई हमारी गलती बताए तो हमें बुरा लग जाता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी कमियों की ओर इसलिए ध्यान दिलाते हैं ताकि हम उसे बेहतर बना सकें।
1: बिल्कुल,
0: यह कहानी एक ऐसी लड़की की है कशिश, जिसे अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन एक छोटी सी घटना ने उसकी सोच बदल दी। श्रोता साथियों, एक छोटे से कस्बे में राधिका नाम की लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, गाना भी अच्छा गाती थी और हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी।
1: बिल्कुल,
0: स्कूल में शिक्षक उसकी तारीफ करते थे, इसलिए धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह हर काम सबसे बेहतर करती है। राधिका की कशिश एक आदत थी, उसे अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं थी। यदि कोई उसकी छोटी छोटी गलतियां उसे बता देता तो वह तुरंत नाराज हो जाती। उसकी माँ कई बार समझती कि बेटी हर बात पर गुस्सा नहीं करते, जो लोग हमारी गलती बताते हैं वे कई बार हमारा भला चाहते हैं, लेकिन राधिका हर बार यही कहती कि लोग बस कमी निकालना जानते हैं, किसी को मेरी मेहनत दिखाई नहीं देती। कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम होने वाला था, इस बार राधिका को मुख्य मंच पर गीत गाने का मौका मिला। वो बहुत खुश थी कशिश। उसने कई दिनों तक तैयारी की, पूरे स्कूल में उसकी चर्चा होने लगी। उसकी सहेली नेहा ने एक दिन अभ्यास सुनते हुए धीरे से कहा, राधिका तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में कुछ शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे, अगर थोड़ा धीरे और स्पष्ट गाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना सुनते ही राधिका का चेहरा उतर गया। तुम्हें हमेशा मेरी गलती ही दिखाई देती है, वह गुस्से में बोली। नेहा ने समझाने की कोशिश की कि मैं सिर्फ मदद करना चाह रही हूँ, लेकिन राधिका बिना कुछ सुने वहां से चली गई। वार्षिक कार्यक्रम का दिन आया, पूरा स्कूल सजाया गया, शिक्षक, अभिभावक और बच्चे सभी मौजूद थे। जब राधिका मंच पर पहुंची तो उसने आत्मविश्वास के साथ गाना शुरू किया। शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसकी घबराहट बढ़ने लगी। जल्दी जल्दी गाने के कारण कई बार शब्द साफ सुनाई नहीं दिए, कुछ लोग आपस में बातें करने लगे, पीछे बैठे शिक्षक भी ध्यान से सुनने लगे। राधिका ने जैसे तैसे गाना पूरा किया, लेकिन मंच से उतरते समय उसका चेहरे की चमक गायब थी।
1: बिल्कुल,
0: उसे महसूस हो गया था कि कहीं ना कहीं कमी रह गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद संगीत शिक्षक उसके पास आए, उन्होंने प्यार से कहा, राधिका तुम्हारी आवाज सच में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम शब्दों पर थोड़ा और ध्यान देती तो प्रस्तुति और शानदार हो सकती थी। ये वही बात थी कशिश जो नेहा ने उसे कही थी। राधिका चुप हो गई। उसे याद आया कि उसने नेहा की बात सुने बिना ही उसे गलत समझ लिया था। उस रात वह देर तक सोचती रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि हर आलोचना बुरी नहीं होती, कुछ बातों में सुधार के लिए भी जगह होती है।
1: जी।
0: अगले दिन राधिका खुद नेहा के पास गई। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। नेहा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, दोस्ती वही होती है जो सच्ची बात कहे। उस दिन के बाद राधिका ने अपनी आदत बदलने की कोशिश शुरू कर दी। अब यदि कोई उसकी गलती बताता तो वह तुरंत नाराज होने की बजाय सोचती कि क्या उसमें सचमुच सुधार की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे उसमें बड़ा बदलाव आने लगा। वह पहले से ज्यादा समझदार और शांत हो गई। कुछ महीनों बाद जिले में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्कूल की तरफ से फिर राधिका को गाने के लिए चुना गया। इस बार उसने खूब मेहनत की। उसने अपने शिक्षक और दोस्तों से सलाह ली, जहां गलती होती वह सुधारने की कोशिश करती। कार्यक्रम के दिन जब उसने मंच पर गाना गाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी आवाज, शब्दों की स्पष्टता और आत्मविश्वास सब कुछ शानदार था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वही संगीत शिक्षक मुस्कुराते हुए देखते हैं और बोलते हैं, देखा राधिका, जो इंसान अपनी कमियों को सुन लेता है वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। राधिका की आंखों में चमक थी। वह समझ चुकी थी कि आलोचना अपमान नहीं बल्कि सुधार का रास्ता भी हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: तो दूसरी कहानी हमें सिखाती है कि हर आलोचना बुरी नहीं होती। कई बार लोग हमारी भलाई के लिए हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाते हैं, और यदि हम गुस्से करने की बजाय शांत मन से सुनते हैं तो वही बातें हमें बेहतर इंसान बना सकती है।
1: जी हाँ।
0: जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुनने का साहस रखता है वही जीवन में सचमुच आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने बहुत ही प्यारी सी कहानी हमारे साथियों को सुनाई और इस कहानी से हम ये समझ पाए हैं साथियों कि जो हमारी आलोचना करता है वह व्यक्ति हर बार गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: देखते हैं कि सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। आलोचना हमें बताती है कि हम कहां पर पीछे रह जाते हैं और कहां हमें सुधार की जरूरत है। कह सकते हैं साथियों कि बिना आलोचना के प्रगति संभव नहीं है।
0: जी हाँ,
1: तो इस तरीके से अंजलि जी जैसा कि बातें

0: कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे साथियों से कर ही रहे हैं। कुछ छोटी मोटी बातें और भी आगे कार्यक्रम में हम करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आलोचना को लेकर बहुत अच्छी बातें गीत से पहले भी चल रही थी साथियों,
1: बिल्कुल
0: यही आपको बताना चाहूंगी कि संत कबीर दास जी ने आलोचना के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। अंजलि जी, उनका कहना है, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी कि साथियों, जो हमारी आलोचना करता है उसे अपने पास रखना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वह बिना साबुन और पानी हमारे स्वभाव को साफ कर देता है। श्रोता साथियों, ये दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों से पहले था।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति से गलतियां तो होती है, इसलिए आलोचना से भागना नहीं है बल्कि सीखना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंजलि जी पूर्ण नहीं होता। इसलिए आलोचना से डरने या भागने के बजाय हमें उससे सीखने की आदत डालनी चाहिए साथियों।
1: बिल्कुल कशिश।
0: जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तभी हम बेहतर इंसान बन पाते हैं। देखा जाता है कि आलोचना हमें धैर्य, विनम्रता, समझदारी, आत्मविश्वास सिखाती है। ये हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है अंजलि जी, और हमें सफलता की ओर ले जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना केवल अपनी खूबियों को पहचानने से संभव नहीं होता, बल्कि अपनी कमियों को समझने से भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: आलोचना उसी प्रकार का हिस्सा है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। यह हमें रुक कर सोचने, खुद को परखने और अपने व्यवहार और कार्यों में सुधार करने का अवसर देती है।
0: जी हाँ,
1: जो लोग केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं वे धीरे धीरे एक ऐसे दायरे में कैद हो जाते हैं जहाँ सीखने की गुंजाइश कम हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: वहीं जो लोग धैर्य के साथ आलोचना सुनते हैं वे अनुभवों में समृद्ध हो जाते हैं। वे समझते हैं कशिश के हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है।
0: जी,
1: कई बार दूसरे की कहीं हुई छोटी सी बात भी जीवन की बड़ी सीख बन जाती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि आलोचना सुनना हमें मानसिक रूप से परिपक्व बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: यह हमें अंदर से सहनशील, विनम्रता और आत्मविश्लेषण की भावना विकसित करता है। जब हम कशिश बिना टूटे, बिना

0: बल्कि सुधार का अवसर भी हो सकती है यदि हम खुले मन से अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। साथियों, तो हम न केवल बेहतर इंसान बन सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव हमारे द्वारा लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं कि यही एक स्वस्थ समाज, मजबूत रिश्ते और सफल जीवन के लिए एक जरूरी कार्य हो सकता है कि हम आलोचना से घबराए नहीं बल्कि उससे सीखने आगे बढ़ने का एक माध्यम बनाए। यही परिपक्वता साथियों, यही विकास का रास्ता है और यही जीवन की सच्चाई और समझ भी है।
1: जी हाँ कशिश, समाज, परिवार और कार्यक्षेत्र हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी गलतियों की ओर इशारा करेंगे। कुछ बातें कठोर लग सकती हैं, कुछ अनुचित भी हो सकती हैं, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है।
0: बिल्कुल,
1: समझदारी इसी में है कि हम नकारात्मकता को अपने मन पर हावी न होने दें और उपयोगी बातों को अपनी प्रगति का हिस्सा बना लें। आलोचना को दुश्मनी नहीं बल्कि आत्मविकास का अवसर मानना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सुनने, समझने, बदलने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना लेता है कशिश, कि एक दिन वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं जो कभी उसकी आलोचना किया करते थे।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को हमारे कार्यक्रम का पता हम बता दें, ताकि हमें ये पता चल सके कि दोस्तों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगा।
1: बिल्कुल, तो साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार, नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है साथियों 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी है साथियों हमारे बीच पंटपुर से है। गीत के बोल है चोरी चोरी चुपके चुपके। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं जाकिर मुलानी, सोमिया, सुबान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में महाराष्ट्र से है संतोष जी, सुनैना जी, सुकन्या जी, सविता जी और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों सुकरी कला से है उत्तम सिंह जंगेल, मोरत सिंह जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदी जंगेल जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। आर्य नगर कोक्का भिलाई से है उत्तम सिंह जंगेल, मोरत सिंह जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदी जंगेल जी और भी साथी जुड़ रहे हैं दोस्तों। मंजू का टीला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, संताना MP से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो दोस्तों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच पंटापुर सिटी से है। गीत के बोल है कोई तो बताओ, ये इस फिल्म का नाम है साथियों संगीत। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं साथियों हमारे इसी गीत के साथ में। पंजाब से है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। जिला खरगोना मध्य प्रदेश से है डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समराज आर्यन, बीबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। जिला भागपत से है आसिर अली खान, मोमित नाज, मुस्कान जी, सादिक अली खान जी, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच नेपाल नगर मध्य प्रदेश से ही। फिल्म का नाम है लव स्टोरी। गीत के बोले दोस्तों, प्यार हुआ चुपके से। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं सुधर शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। गश डुंडवारा से ही शमशुल कमर राही, शाही फातिमा, आनंद खान, फिनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों जिला बागपत से ही जगमोहन श्री प्रजापत, श्रीमती मोनेश देवी जी, अर्जुन भारतीय, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नेतुन जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सोनम देवी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच भागवत से ही। फिल्म का नाम है मोहब्बतें। गीत के बोले साथियों चलते चलते। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे अब्दुल्ला सत्तार अब्बासी जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं हमारे इसी गीत को। मस्तानापुरा से अंता भगत, अरुणा भगत, चैतन्य भगत, सुलक्षणा भगत जी। और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से है बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों हमारे इसी गीत के साथ में नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है महाराजा कृतपुरी गोस्वामी, लक्ष्मणी देवी जी, जोगेशपुरी टिंकल डिंपल, मीनाक्षी तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच राजस्थान से ही। फिल्म का नाम है इज्जत। गीत के बोले दोस्तों, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। इस गीत के साथ चुनना चाह रहे हैं राम कुमार जी, चंद्रकला जी। और भी साथी सुनना चाह रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत को, जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका रेशमी डांगी जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत्ता शिवाश, श्रीमती करुणा शिवाश, आयुष शिवाश, विवेक शिवाश, बेबी आयुष शिवाश। बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस राज जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं। बरखेड़ा से है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चैतन्य नाहटा, दिलीप सिंह जी, दिशा कुशल जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं साथियों। कुरवाली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी जी, राहुल कुमार जी, नितिन कुमार जी, सोनम वर्मा जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच छत्तीसगढ़ से है। फिल्म का नाम है युवा, गीत के बोले कभी नीम नीम। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे उत्तम कुमार बंगेल, रुक्मणी बंगेल, भारती, साहिल बंगेल जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे। दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में भोपालगढ़ राजस्थान से ही धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी और इस गीत की अनुरोध करता है। दोस्तों जिला सिरसा से ही राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं। दोस्तों हमारे इसी गीत को सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलियस डिकेस्टो जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।
1: कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सत्य सत्य। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सत्य सत्य। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच श्रीरामपुर महाराष्ट्र से ही। फिल्म का नाम है दबंग, गीत की बोले दोस्तों चोरी किया रे। इस गीत के साथ चुना चार जाकिर मुलानी, नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद शेख, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सभिया मुजावर, मिकलायन मुजावर, जैन मुजावर जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। महाराष्ट्र से ही शतधंधाड़े वकील वाल्मीकि नीजा जी, सप्रीला जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। रायगढ़ बिहार से उमा राज, रमेश उमा, दिनेश उमा, हितेश उमा जी और भूपेश उमा जी, जेल रोड खड़ा से ही दुर्गा कुमारी जी, सपना जी और राकेश जी, डुमराव से है लाल बहादुर जी, दिव्या जी, चंद्रकला सहारनपुर से महेश यादव, दीपक यादव, यामिनी यादव जी और नरेश यादव जी और भी साथी जुड़ रहे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र से है पीए नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इगले, मंगला इगले, आशीष मोहेंकर जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच हरिद्वार से ही। फिल्म का नाम है दिलवाले, गीत के बोले साथियों, जीता था जिसके लिए। इस गीत के साथ जुना चाह रहे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेरा जहां, और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। राजस्थान से है शंभू दयालाल खटक, विमला देवी जी, अमरजीत जी, सुंदरलाल जी, योगेश कुमार जी, दीपक कुमार जी, कुमारी पूजा खटक जी और भी साथी जुड़ रहे हैं दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका जीविका, सोनू कुमार, अर्चना कुमार जी। पुनावले से अजय सोने, करिश्मा जी, अविका जी,

चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केसु रिधान खुराना जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना पटेल के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खड़वा मध्य प्रदेश से। गीत के बोल ही पास रहने भी थे, कुछ कुछ होता है। इस गीत की फरमाइश करता है बेबी सालिया डवर, बेबी हलीमा डवर, बेबी जिक्रा डवर, बेबी आयशा खत्री। धर्मपुरी से जुड़ना चाह रही है मुशा जी खत्री, ईशा जी खत्री, जाकिर जी खत्री। सलार पहलगाम से जुड़ना चाह रही हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवीजी देशमुख। पटेल नगर मालो से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गुरजू झंझोरिया, गुड्डू झंझोरिया। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुरा से अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका दली। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडपुर शहर से। फिल्म का नाम है लगान, गीत की बोल है सुनमितवा। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं चचेरी छत्तीसगढ़ से, शंकर कोलाम, संध्या कोलाम, संतोषी कोलाम, संजीव कोलाम, संध्या कोलाम, शिवम जी कोलाम। इस गीत के अनुरोध करता है गंजडवाड़ा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से, बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या जी शाहू। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं सुन मितवा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने बहुत प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे सुन मितवा। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है एकता कॉलोनी रोहतक से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। इस गीत की फरमाइश करता है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बुलेंद खट उत्तर प्रदेश से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल, दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पुराना तालाब डुमराव से, वल्लीउल्ला अंसारी, उस्मानाज अंसारी। सरगुजा से जुड़ना चाह रहे हैं विनोद थापा, पूजा रानी, विजय थापा। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं जानवी डोमिन, यामिनी, रोहित डोम। लाहौरा से जुड़ रहे हैं फर्जी हरिशंकर भेलदार, फर्जू प्रभा रानी भेलदार। जेल रोड रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं उमा राज, जगदीश राज, जगदीश जी राज। इस गीत के अनुरोध करता है डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर, आरव और अर्पिता जी मधुरकर। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। इस गीत की फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रही है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणालजी मेहरा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर से जयराम बिंद, सीताराम बिंद, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रणीत प्रतिमित। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, यतीश, योगेश, युद्धव जी कड़वासरा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं चितलवाड़ी अकोला से अमोल इगले, अर्चना इगले, सर्वेज इगले, अधीरा इगले, राजवी इगले और इगले परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी, मुकेश जी गोस्वामी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चल छैया छैया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है एक चादर मिली सी। गीत के बोल हैं क्या सोना क्या चांदी। इस गीत की फरमाइश करते हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बरेली से इशाक अहमद, अफसार इमक, अंसार इमक, दिलावर मोहम्मद जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, बिफरा नवाज, बेबी चाहत जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन नायरा, मोहम्मद अलफेज, सेवाज शेख। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य जी कसाना। इस गीत की अनुरोध करता है सिंधी बुजुर्ग सी किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नूजी वड़तकर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सरगुजा, प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और डोमिन परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं रमेश कुमार शाहू, मीरा देवी, गंगा देवी शाहू, मिश्री देवी जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघा रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कलानूर हरियाणा से। फिल्म का नाम है मैं हूं ना, गीत के बोल हैं तुमसे मिलके जो हाल है क्या करें। इस गीत की फरमाइश करता है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सोहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला अनुश्री सैनी। पारा से जुड़ना चाह रहे हैं मीरा, सिमरन, योगेश कुमार राजवाड़े। इस गीत के अनुरोध करता है पुणे से पंकज वाडोदी, आर्या, प्रियंका, बेटी जी वाडोदी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांती, दीप्ता कुमारी थांती, डॉक्टर प्रियंका थांती, डॉक्टर प्रशांत थांती, डॉक्टर प्रियम थांती, बीबी वामिका वानी जी थांती। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार कॉलोनी लोनी से नसमुल इस्लाम नोरीन जी, प्रकाशवीर राजपूत। लाहौरा बालोद से जुड़ना चाह रही कमलेश जयपुरिया, चंद्रनगर से जुड़ रहे हैं रजनी सिंह चौहान, पिंकी चौहान, दुर्गा कुमारी। रायगढ़ से जुड़ रहे हैं लालचंद मिश्रा, कुमकुम जी मिश्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश शाहू। बिहार से जुड़ना चाह रहे डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी, दानिश जी अंसारी। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस गीत की फरमाइश करता है उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनो, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बनने, आरुषि शोरिया, दिनेश जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, नेता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाह, यमन नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीविका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। इसे भी जुड़ना चाह रहे गंजूडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिक शेख, अमर अफरीदी जी। भीड़ शहर महाराष्ट्र से जुड़ रही नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयशी महलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिटू, पीपी कुतलेश जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत के अनुरोध करता है उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जरूर वरूड से बाबा साहेब वाड़ोदी, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानेरी। इस गीत के अनुरोध करता है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। पंजाब से जुड़ना चाह रहे भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाली खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इस गीत के अनुरोध करता है क्लब सी सुधा शर्मा, अनामिका जी शर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे पटियाकला दुर्ग सी संजय, सुदिता, शशंक, सीमाजी शाहू और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पटलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बीबी वेदई जोशी, हंसिका जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती जेवंती जी केवट। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागुड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीवाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, जहाँ हर परेशानी का मिलता है हल, जहाँ हर सवाल का होता है सरल और सटीक जवाब। जी हाँ दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन सही दिशा और सही सोच से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। और इसी क्रम में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा में आपको बता रही हूँ, तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शाम एक गजलें। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहां भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: ये सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र? अपने वो होते हैं जो हमें सद्कार्य के लिए प्रेरित करे, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि, वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं।
1: आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश और मनीषा हम बात करने वाले हैं सच्चा प्रेम और अहंकार को लेकर।
0: जी हाँ
1: साथियों, मनुष्य के जीवन में दो भावनाएं ऐसी हैं जो उसके व्यक्तित्व और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करती हैं। सच्चा प्रेम और अहंकार, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है मनीषा। जहाँ सच्चा प्रेम त्याग समर्पण और समझ का प्रतीक है कशिश, वहीं अहंकार स्वयं को सर्वोपरि मानने की भावना है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा गया है जहाँ प्रेम होता है वहाँ मैं नहीं हम होता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा जागृति जी। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं को हम इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें बताएंगे। लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथी शुरुआत में गीत संगीत के साथ पहले कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन करते हैं, तो क्यों ना आज भी कार्यक्रम के उसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों को मनोरंजन इस गीत के साथ हम करवाएं।
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल कशिश। आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
2: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सच्चा प्रेम और अहंकार।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि मानव जीवन में दो भाव ऐसे हैं जो हमारे व्यक्तित्व, संबंध और जीवन की दिशाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं, सच्चा प्रेम और अहंकार। श्रोता साथियों, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ सच्चा प्रेम जोड़ता है वहीं अहंकार तोड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: प्रेम में विनम्रता, त्याग, सहनशीलता और अपनापन होता है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि श्रोता साथियों अहंकार में घमंड, स्वार्थ, अलगाव छिपा होता है। आज के दौर में श्रोता साथियों, विशेषकर युवाओं के जीवन में इन दोनों भावों का संतुलन बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: युवा अवस्था वह समय है साथियों जब व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करता है, रिश्ते बनाता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यदि इस समय सच्चे प्रेम को अपनाया जाए और अहंकार को दूर किया जाए जागृति जी, तो जीवन सफल और सुखद बन सकता है।
2: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा, और हम देखते हैं कि युवावस्था जीवन का वह दौर है जहां भावनाएं गहरी होती हैं, सपने बड़े होते हैं और रिश्तों की समझ विकसित हो रही होती है।
1: बिल्कुल
2: दोस्तों, इसी समय प्रेम और अहंकार दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ,
2: लेकिन जानने के लिए सवाल ये है कि क्या प्रेम और अहंकार एक साथ चल सकते हैं या फिर इनमें संतुलन बनाना ही जीवन की असली कला है।
0: बिल्कुल,
2: हम देखते हैं साथियों कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण या फिर बाहरी सुंदरता से जुड़ा नहीं होता। यह एक गहरी भावना होती है जिसमें त्याग, समझ, सम्मान और विश्वास शामिल होता है। हम कह सकते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना शर्त के हो, जिसमें स्वार्थ की जगह समर्पण हो, जहां दूसरों की खुशी में अपनी खुशी दिखाई दे।
0: बिल्कुल,
2: और आज के समय में तो जागृति जी, अक्सर युवा प्रेम को सिर्फ फीलिंग या रिलेशनशिप स्टेटस तक ही सीमित कर देते हैं।
1: जी हाँ,
2: लेकिन सच्चा प्रेम इससे कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है।
1: बिल्कुल कशिश, जैसे कि हम सच्चा प्रेम और अहंकार की बात कर रहे हैं, तो सच्चा प्रेम वो भावना है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है।
0: जी हाँ,
1: इसमें न कोई शर्त होती है न कोई अपेक्षा होती है, केवल देने में विश्वास करता है, पाने में नहीं। सच्चा प्रेम किसी के गुण दोषों को स्वीकार करता है श्रोताओं, और हर परिस्थिति में साथ निभाता है।
0: बिल्कुल हाँ,
1: माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, मित्रों के बीच विश्वास या किसी के लिए बिना कारण चिंता करना, ये सब सच्चे प्रेम के उदाहरण है। श्रोताओं, अहंकार का मतलब है अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझना और दूसरों को कमतर रखना। यह व्यक्ति के भीतर एक ऐसा भ्रम पैदा करता है मनीषा, कि वो कभी गलत नहीं हो सकता।
0: जी हाँ,
1: अहंकार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसे अकेला बना देता है कशिश।
0: जी
1: जब इंसान अपनी सफलता, धन या ज्ञान के कारण दूसरों को छोटा समझने लगता है, तब अहंकार जन्म लेता है। इसलिए कहा गया है श्रोता साथियों कि अहंकार वो दीवार है जो रिश्तों को भी तोड़ देती है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में युवा तेजी से बदलती दुनिया का हिस्सा है।
2: बिल्कुल,
0: वे करियर, रिश्ते और समाज की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में श्रोता साथियों, सच्चा प्रेम उनके जीवन में संतुलन लाता है।
2: बिल्कुल,
0: उनको मानसिक शांति देता है। सच्चा प्रेम श्रोता साथियों मन को स्थिर और शांत रखता है, यह तनाव और चिंता को कम करता है, साथ ही यह प्रेम से रिश्तों में विश्वास की समझ को बढ़ाता है।
1: बिल्कुल,
0: प्रेम व्यक्ति को सकारात्मक और खुशहाल जिंदगी देता है। साथ ही श्रोता साथियों, जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है।
2: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा, अब बात ये आती है कि प्रेम और अहंकार का टकराव अगर हो जाए तो क्या होगा।
0: जी
2: तो साथियों, सच्चा प्रेम और अहंकार कभी भी एक साथ नहीं रह सकते।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम होता है, और जहाँ अहंकार होता है साथियों वहाँ केवल मैं की भावना होती है।
0: जी हाँ,
2: हम देखते हैं जागृति जी और मनीषा की, जब किसी रिश्ते में अहंकार आ जाता है तो छोटी छोटी बातें भी झगड़ों का कारण बन जाती है।
1: जी हाँ,
2: माफी मांगना कठिन हो जाता है और संवाद की तो कह सकते हैं कि दिलचस्पी ही खत्म होने लगती है।
0: जी हाँ
1: बिल्कुल
2: दोस्तों, इसी कारण से कि कई रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि लोग अपने अहंकार को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। ऐसे में संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि अहंकार पूरी तरह बुरा नहीं होता।
0: जी,
2: एक स्वस्थ आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। दोस्तों, आत्मसम्मान हमें गलत चीजों के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है।
1: बिल्कुल,
2: यह हमें अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जब यही आत्मसम्मान अहंकार बन जाए तब समस्या और बड़ी बन जाती है।
1: जी हाँ कशिश, तो जैसा कि हमारी बातें चल रही है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
2: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी अहंकार और सच्चे प्रेम को लेकर, तो यही जानते हैं अहंकार और सच्चे प्रेम को लेकर कि सच्चा प्रेम और अहंकार में सबसे बड़ा अंतर ये है कि सच्चा प्रेम झुकना सिखाता है मनीषा, और अहंकार ऊंचा दिखना चाहता है।
1: जी हाँ,
0: सच्चा प्रेम माफ करना सिखाता है, अहंकार बदल लेने को उकसाता है। सच्चा प्रेम रिश्ते जोड़ता है और अहंकार रिश्ते तोड़ता है।
1: जी हाँ,
0: जहाँ प्रेम होता है वहाँ समझ और धैर्य होती है, लेकिन जहाँ अहंकार होता है वहाँ केवल विवाद और दूरी होती है। श्रोता साथियों,
1: बिल्कुल
0: रिश्ते की नींव सच्चे प्रेम पर टिकी होती है, हम सभी भी जानते हैं। अगर किसी रिश्ते में प्रेम है तो वो कठिनाई को पार कर सकता है। श्रोताओं, पति पत्नी के बीच समझ, दोस्तों के बीच विश्वास और परिवार में एकता, ये सब सच्चे प्रेम के कारण ही संभव है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं मनीषा और कशिश, तो हम उसके लिए त्याग करने को तैयार हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आने के कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि रिश्ते निभाने के लिए प्रेम जरूरी है, जीतने के लिए नहीं।
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब प्रेम और अहंकार के बीच संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल,
2: उदाहरण के लिए अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि किसी रिश्ते में छोटे से बात पर अहंकार आ जाने पर संबंध टूट सकता है, यदि उस समय व्यक्ति अहंकार छोड़कर प्रेम को चुन ले तो संबंध फिर से जुड़ सकते हैं। श्रोता साथियों, इतिहास और समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रेम ने अहंकार को हराया है। महान व्यक्तियों ने हमेशा प्रेम, विनम्रता और सेवा को महत्व दिया है।
1: बिल्कुल,
2: वही अहंकारी लोग अंत में हमेशा दुखद रहे हैं। श्रोता साथियों, सच्चा प्रेम और अहंकार जीवन के दो विपरीत पहलू हैं। जहाँ प्रेम हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, वही अहंकार हमें गिरा देता है। युवाओं के लिए समझना जागृति जी बहुत जरूरी है कि सफलता और खुशहाली का रास्ता प्रेम और विनम्रता से होकर गुजरता है, न कि अहंकार से।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो प्रेम में स्पेस का भी एक महत्व होता है। जैसे कि दोस्तों, सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वतंत्रता देने का भी नाम है।
2: बिल्कुल,
1: हर इंसान को अपनी पहचान और समय चाहिए होता है। जागृति जी, जो प्रेम कंट्रोल करे वो प्रेम नहीं बल्कि बंधन बन जाता है साथियों।
2: जी हाँ,
1: और ऐसे में समस्याएं और बढ़ जाती है। तो हम हमारे युवा साथियों से यही कहना चाहेंगे कि उनके लिए ये जरूरी है कि वे भावनाओं को समझें, सिर्फ महसूस ही ना करें। हर छोटी बात पर रिएक्ट करना प्रेम नहीं होता साथियों, समझदारी से जवाब देना ही परिपक्वता है।
2: जी हाँ,
1: आपको बताएं तो सच्चा प्रेम वो होता है जो भावनात्मक संतुलन हमें सिखाए।
2: जी हाँ,
1: बहुत बार जागृति जी, अहंकार के पीछे असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी छुपी हुई होती है। मैं कमजोर न दिखूं, मुझे वह छोड़ न दे, ऐसे कुछ बातें हमारे अंदर डर पैदा कर देती है साथियों।
2: जी हाँ,
1: इसलिए व्यक्ति खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है।
2: जी हाँ,
1: आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि रिश्ते हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। आप जैसे होते हैं वैसे ही आपके रिश्ते बनते हैं।
2: बिल्कुल,
1: अगर आपके अंदर साथियों अहंकार ज्यादा है तो रिश्तों में दूरी बढ़ेगी, और अगर आपके अंदर प्रेम है तो रिश्ते आपके मजबूत होंगे।
0: जी हाँ कशिश, और जैसा कि हम रिश्ते और सच्चे प्रेम को लेकर बातचीत कर रहे हैं, अहंकार को लेकर बात कर रहे हैं, तो श्रोताओं, जीवन में सच्चा प्रेम हमें खुश और संतुष्ट बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: ये हमें मानसिक शांति देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। इसी के साथ साथियों, आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन में सच्चा प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें जोड़ती है, संभालती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: जी हाँ,
0: हम कह सकते हैं कि अहंकार एक ऐसा आग है मनीषा, जो धीरे धीरे हमारे रिश्तों को जला देती है और हमें अकेला कर देती है। हमें समझना होगा कशिश कि जीत हमेशा झुकने में होती है, न कि ऊंचा दिखने में।
1: जी हाँ,
0: अगर हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाएंगे और अहंकार को त्याग देंगे तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल होगा बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत बनेंगे।
2: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युवा डिजिटल दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर दिखावा, लाइक्स और फॉलोअर्स की दौड़ ने अहंकार को बढ़ावा दिया है। लोग अपनी वास्तविक जिंदगी से ज्यादा अपनी छवि को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं।
1: बिल्कुल,
2: सच्चा प्रेम डिजिटल दुनिया से भी श्रोता साथियों जरूरी है, लेकिन वह दिखावे से अलग होता है। सच्चा प्रेम हमें दिखाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होता है। यह ऑनलाइन स्टेटस से नहीं बल्कि ऑफलाइन व्यवहार से पहचाना जाता है।
1: बिल्कुल,
2: युवा साथियों को यह समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर मिलने वाला ध्यान अस्थायी है, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन भर साथ निभाते हैं।
0: जी हाँ
1: बिल्कुल मनीषा, तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत से आप इतना समझ लीजिए कि जीवन में रिश्तों की असली खूबसूरती सच्चे प्रेम में छुपी हुई होती है।
2: बिल्कुल,
1: उनकी सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों है अहंकार।
2: जी हाँ,
1: प्रेम हमें जोड़ता है, संवारता है और एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाता है, जबकि जो अहंकार है वो हमें तोड़ता है, दूर करता है और धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट को ही खत्म कर देता है।
2: बिल्कुल,
1: याद रखिए युवा साथियों, हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी झुकना भी जरूरी होता है।
2: जी हाँ,
1: हर बात पर अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं है, कभी किसी की बात समझना भी जरूरी होता है।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे जरूरी रिश्ते में से नहीं हम से चलते हैं।
0: जी
1: युवाओं
0: हाँ।
1: के लिए सबसे बड़ी सीख यही होगी जागृति जी कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना उनके लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उसे अहंकार वे न बनने दें, प्रेम करें लेकिन समझदारी और सम्मान के साथ करें।
0: जी
1: क्योंकि
0: हाँ।
1: दोस्तों जीवन की असली दौलत न पैसा है न सफलता
2: जी,
1: बल्कि वो रिश्ते हैं जिनमें सच्चा प्रेम और अपनापन होता है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: याद रखें दोस्तों, जहाँ दिल झुकता है वही रिश्ते टिकते हैं, और जहाँ अहंकार उठता है वहाँ अपने भी छूट जाते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं याद रखिए, झुकना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को निभाने की सबसे बड़ी ताकत है, और जो इंसान समय पर अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चे प्रेम की गहराई को समझ पाता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोताओं हम एक ऐसा जीवन चुने जहां शब्दों में मिठास हो, व्यवहार में विनम्रता हो और दिल में सच्चा प्रेम हो, क्योंकि अंत में वही इंसान सफल कहलाता है कशिश और मनीषा, जिसने लोगों के दिल जीते हो, न कि केवल बहस की हो।
2: जी हाँ।
0: इसलिए कहा गया है कि अहंकार से ऊपर उठिए, प्रेम को अपनाइए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत दिलों को जीतने में है।
2: जी हाँ जागृति जी, तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी युवा साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
2: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम युवाओं की आवाज अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातचीत रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम युवाओं की आवाज से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
1: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को,
2: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पाराशर,
1: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ
0: साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चों को ये समझाना कि उत्तर देने की जल्दी नहीं, पहले समझने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: ये एक बहुत ही जरूरी शिक्षा है कशिश, जो आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी दुनिया में बच्चे अक्सर जल्दबाजी में उत्तर देने की कोशिश करते हैं।
1: जी हाँ।
0: चाहे स्कूल हो या सामान्य बातचीत, उन्हें सिखाना होगा कि सोच समझकर जवाब देना ज्यादा जरूरी है और उनके संपूर्ण विकास के लिए भी बेहद लाभकारी है। आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम बच्चों को ये समझा सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि गीत संगीत का दस्तूर है कार्यक्रम का, तो क्या ना शुरुआत में पहले गीत सुन ले हम।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ।

0: जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को हमें ये बताना है कि जवाब देने की जल्दी नहीं, पहले समझना जरूरी है।
1: जी जी
0: अंजलि जी, जैसा कि आपने गीत से पहले भी बताया था कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बच्चे भी हर बात का जवाब तुरंत देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि तुरंत बोलना ही चतुराई है। लेकिन साथियों, क्या वे जो कह रहे हैं वे खुद समझ पा रहे हैं? क्या जवाब देने से पहले वे बात को पूरी तरह समझ रहे हैं? इसी सोच को बदलने और बच्चों में समझदारी की भावनाओं को विकसित करने के लिए ये जरूरी है कि हम उन्हें ये सिखाएं कि जवाब देने की जल्दी नहीं, बात को समझना पहले जरूरी होता है।
2: बिल्कुल कशिश, इसकी शुरुआत घर से करें, यानी कि सही माहौल बनाएं। बातचीत के तरीके की बात करें तो बच्चों से बात करते समय खुद भी धीमे बोलें और सोच समझकर बोलने को प्रोत्साहित करें।
0: बिल्कुल।
2: जब बच्चा कुछ कहे तो उसे ध्यान से सुने और बीच में न काटे, इससे उसे लगेगा कि ध्यान देना जरूरी होता है। उदाहरण देकर भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। श्रोता साथियों, बच्चों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों से चीजें जल्दी समझ में आती है।
0: बिल्कुल।
2: अगर उदाहरण की बात करें तो बच्चों को हमें बताना है कि अगर किसी ने तुमसे पूछा है कि एक पेड़ पर चार पंछी बैठे हैं, दो उड़ गए तो कितने बचे? जल्दी में बच्चा बोलेगा दो, पर सही उत्तर है दो उड़ गए तो अभी भी दो बैठे हैं। सोचो समझो और फिर उत्तर दो।
0: बिल्कुल।
2: इसी के साथ खाने में अगर हम बिना देखे जल्दी से मिर्ची खा लें तो नुकसान हो सकता है। मतलब हर चीज में सोचना समझना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
2: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बच्चों से हमें कहना है कि जब भी कोई सवाल आए तो मन में पांच तक गिने फिर जवाब दें। अभ्यास उनके सोचने की क्षमता को बेहतर बनाता है। जवाब देना ताकत नहीं, जवाब से पहले सोच लेना समझदारी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ दोस्तों हम उन्हें ये भी बताएं कि जब कोई कुछ कह रहा होता है तब पूरा सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अधूरी बात पर जवाब देने से गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं।
2: बिल्कुल।
0: समझने से बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ती है, वे श्रोता साथियों जल्दबाजी से बचते हैं और बातों का विश्लेषण करना सीखते हैं। साथ ही जब बच्चे थोड़ा रुक कर सोचते हैं वे अक्सर सही और प्रभावशाली उत्तर भी दे पाते हैं।
2: जी जी
0: दोस्तों, अब यही अगर बात करें कि जल्दबाजी में उत्तर देने से क्या होता है, तो सबसे पहले तो गलत जवाब दे दिया जाता है, यानी कि बिना सोचे समझे उत्तर देने से उत्तर गलत भी हो सकता है, ये हम अपने बच्चों को बताएं। कई बार बच्चे जल्दबाजी में अंजलि जी बड़ों की बात बीच में ही काट देते हैं, जिससे असम्मान की भावना भी बड़ों में पैदा होती है।
2: बिल्कुल।
0: ये भी आप अपने बच्चों को बताएं श्रोता साथियों। साथ ही ये भी बताएं कि यदि बच्चा पूरी बात नहीं समझता है और बीच में बोल देता है तो दूसरों को भी भ्रम हो सकता है।
2: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि हमें समझ का महत्व भी बच्चों को समझाना है, यानी कि सिर्फ रटने से नहीं होता ज्ञान, यानी कि बच्चों से कहना है कि अगर तुम बिना समझे जवाब दो तो परीक्षा में गलती हो सकती है।
0: जी जी।
2: लेकिन अगर पहले समझो फिर जवाब दो तो खुद ब खुद ये सारी चीजें हमें आ जाती हैं। क्लासरूम का भी उदाहरण हम बच्चों को दे सकते हैं कि अगर टीचर कुछ समझा रही है तो तुम तुरंत जवाब देना चाहो तो शायद पूरा सवाल ही न सुनो और गलत उत्तर दे दोगे। इसी के साथ हमें बच्चों को दोष नहीं दिशा देनी है, यानी कि अगर बच्चा जल्दबाजी में गलत उत्तर दे तो उसे डांटना नहीं है बल्कि कहना है कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना, तुम और बेहतर करोगे। जब घर में कोई निर्णय हो, जैसे कि कौन सी फिल्म देखनी या कहाँ जाना है, तो बच्चों के सामने सोच समझ कर निर्णय लें, कहें थोड़ा सोच लेते हैं फिर जवाब देंगे। ऐसे में बच्चे भी ये सारी चीजों को कशिश सीख पाएंगे।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छी चल रही हैं, ये बातें निरंतर और भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
2: जी हाँ।

0: विक्रम सच्चा बचपन में, जैसा कि गीत से पहले हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे थे कि हम हमारे बच्चों को कैसे बताएं कि जवाब देना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो कशिश, हम हमारे बच्चों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसा कि अगर हम बताएं हमारे श्रोता साथियों, तो गोलू 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह हर सवाल का जवाब झटपट देता। स्कूल में बच्चे उसे तेज दिमाग वाला गोलू कहते। उसे इस बात का गर्व भी था। पर कशिश, जब भी कोई सवाल पूछता तो गोलू सबसे पहले हाथ उठाकर जवाब देता, भले ही वह सही हो या गलत। उसकी यह आदत बन गई थी, पहले जवाब दो बाद में सोचो। एक दिन स्कूल में विज्ञान की परीक्षा थी और गोलू बहुत आत्मविश्वासी था। परीक्षा में एक सवाल आया कि ऐसा कौन सा जीव है जो बिना आँखों के देख सकता है।
1: जी हाँ।
0: गोलू ने सवाल पढ़ते ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भूत। वह सोच रहा था यह कोई मजाक वाला सवाल है, सब हंसेंगे, मजा आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो गोलू को बहुत कम अंक मिले। उसका मजाक उड़ने लगा। गोलू कशिश उदास हो गया। दादू ने देखा और बोला, क्या हुआ मेरे चतुर राजा को? गोलू ने पूरी बात बताई। दादू मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुमने सवाल को ध्यान से पढ़ा था? गोलू बोला, हाँ देखा और तुरंत जवाब दे दिया। दादू ने एक लोटा पानी लिया और उसमें एक चुटकी नमक डाला और बोले, क्या दिख रहा है पानी में? गोलू बोला, साफ पानी। दादू बोले, अब इसका स्वाद चखो। गोलू ने चखा, ये तो खारा है। दादू बोले, देखो जैसे तुमने ऊपर से देखा तो नमक नहीं दिखा लेकिन भीतर था, वैसे सवाल को भी केवल ऊपर ऊपर मत देखो, समझो कि वो क्या कहना चाहता है। दादू ने फिर से सवाल पढ़वाया कि ऐसा कौन सा जीव है जो बिना आँखों के देख सकता है। अब गोलू ने ध्यान से सोचा और फिर बोला, चमगादड़, जो आवाज की गूंज से रास्ता पहचानता है।
1: बिल्कुल।
0: दादू ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह, अब तुमने जवाब देने से पहले समझने की ताकत सीख ली है, यही असली समझदारी है। अगले दिन से गोलू की आदत बदल गई। अब वह किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले पढ़कर सोचता, ध्यान से समझता और फिर उत्तर देता।
1: जी हाँ।
0: कशिश, धीरे धीरे गोलू न केवल सबसे समझदार बच्चा बन गया बल्कि वह दूसरों को भी सिखाने लगा। श्रोता साथियों, उत्तर देना जरूरी है लेकिन समझना भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।

0: इसी के साथ दोस्तों हम बच्चों को घर पर भी अभ्यास कराएं, जैसे कि बच्चों से प्रश्न पूछें और कहें कि सोचकर इसका जवाब दो। साथ ही आप एक खेल भी खेल सकते हैं जिसमें बच्चे को जवाब देने से पहले 10 सेकंड सोचना होता है। इसी के साथ ही जब बच्चा सोच समझकर बोलता है अंजलि जी, तो उसकी तारीफ हमें करनी है, इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तब भी बच्चों को सोचने का समय देना चाहिए। उन्हें याद दिलाना है श्रोता साथियों कि जवाब से पहले समझना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर उत्तर गलत हो जाए तो हम उन्हें डांटने के बजाय समझने पर जोर दे सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि

0: श्रोता साथियों, बच्चों के व्यवहार और सोच पर सबसे ज्यादा असर उनके परिवेश का होता है।
1: बिल्कुल,
0: जब परिवार और शिक्षक स्वयं सोच समझकर बात करते हैं, ठहराव के साथ निर्णय लेते हैं और बच्चों को जल्दी जवाब देने के बजाय सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, तब बच्चे भी यही सीखते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों को जवाब देने की जल्दी से ज्यादा समझने की जरूरत सिखाना आज के समय में बेहद जरूरी है। ये केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं साथियों, बल्कि एक सभ्य, समझदार और सोचने वाला नागरिक बनाने के लिए जरूरी है।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि जब बच्चा समझकर उत्तर देना सीखेगा तभी वह सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनेगा। दोस्तों, कहा भी गया है कि जल्दी जवाब देना नहीं, समझदारी से बोलना सीखो। शब्द बाण बन सकते हैं, सोचकर चलाना सीखो।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें रही हैं। आशा करते हैं कि

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाकर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को। नमस्कार।

0: उनके विकास को प्रभावित करते हैं
1: जी।
0: जिसके दीर्घकालिक परिणाम कभी कभी बहुत ही खराब होते हैं। तो पशु चिकित्सा सेवा और टीकों तक जो पहुंच अभी कम है हमारे पशुपालकों की, इसी के कारण इनके स्वास्थ्य पे पड़ने वाले विपरीत प्रभाव जो हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसका सीधा सीधा एक परिणाम पशुपालक को भी होता है कि उनका दो तरफा आर्थिक नुकसान होता है।
1: बिल्कुल।
0: एक पशुधन का उत्पादन क्षमता कम होना और दूसरा उनकी जेब पर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ज्यादा बीमार होने पे उनको ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो इस दोहरे नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि ग्राम स्तर पे हम स्वास्थ्य और टीकाकरण को जो है बहुत स्वास्थ्य जांच और उसका निदान और इसी के साथ में जो है टीकाकरण, इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इसकी आवश्यकता से हम इनकार नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से गांव स्तर पर स्वास्थ्य और टीकाकरण की जो आवश्यकता है उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। यही सर इसके फायदे क्या होंगे, यानी कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा हमारे लिए?
0: जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें कि ग्राम स्तर पे यदि पशुधन स्वास्थ्य और टीकाकरण नियमित होने लगे, तो सबसे पहला तो है कि हमारे पशुधन के स्वास्थ्य में जो है सुधार होगा।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि स्वास्थ्य जांच जो कि वैसे भी सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती है, तो हमारे पशुधन की नियमित स्वास्थ्य जांच हो, समय समय पर पशुधन को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां हैं उनको रोका जा सकता है
1: जी,
0: और उनके उपाय अपनाए जा सकते हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि हमारे पशुधन के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा और उत्पादकता लगातार बढ़ती जाएगी। अब अगर हम टीकाकरण की बात करें तो आमतौर पर गंभीर बीमारियों के खिलाफ व्यापक टीकाकरण सुनिश्चित करने से हमारे पशुधन में आने वाली कुछ बड़ी बीमारियों को जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं
1: जी हाँ।
0: या फिर उनको होने से या आने से पूरी तरह से हम रोक सकते हैं, जिससे टीकाकरण जिन बीमारियों के लिए होते हैं वो अगर पूरी तरह रुक जाएगी तो इससे होने वाले प्रभाव को जो है हम पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: इसी के साथ हमें ये भी लगता है कि हमारे किसानों को जो है सशक्त बनाना होगा। पशुधन के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है उनके सर्वोत्तम तरीके और इसी के साथ साथ आवश्यकता होने पे या समय समय पे हमें पशु स्वास्थ्य सेवाओं का भी जो है उपयोग करना चाहिए
1: जी। बिल्कुल।
0: इसी के साथ साथ हमें हमारे जो किसान हैं, पशुपालक हैं, इनको ये जानकारी भी देना आवश्यक है कि कब कौन से समय कौन सा टीकाकरण करवाना है या किस तरह से जो है पशुधन के लक्षणों को देख के वो ये अनुमान लगा सकें कि ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं है। अगर वो लक्षणों को देखना पहचानना सीख जाएंगे तो होने वाले बड़ी बीमारियों को जो है आसानी से रोका जा सकता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि हमें हमारे किसानों को भी जो है

0: सामान्य रूप से हमको भी सामान्य सिरदर्द होता है तो हमारे मन में ये भावना आती है कि हे प्रभु ये सिरदर्द क्यों है, ये नहीं होता तो मैं कुछ बेहतर कर लेता, मैं काम निपटा लेता। तो इसी तरह से जब हमारे पशुधन पे भी कोई रोग या बीमारी आती है तो वो उस पे बोझ हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: तो इसका एक कारण ये भी है कि पशु चिकित्सा सेवाओं तक जो है हमारी यानी कि पशुपालकों की पहुंच जो है सीमित है, और इसी के कारण बीमारियों का बोझ उन्हें झेलना पड़ता है। जैसे यदि अभी आने वाले समय में भी हम बात करें तो इस समय क्योंकि अब बारिश का समय नज़दीक है और ये समय है खुरपका मुंहपका यानी कि FMD का टीका लगवाने का, तो इसके कारण जो हमारे पशुधन को तकलीफ होती है वो खड़े होने में भी तकलीफ होती है क्योंकि उनके खुर जो है पक जाते हैं, उनमें से मवाद आने लगता है और वो पाँव को टिका नहीं पाते। इसी के साथ साथ इसके जो विषाणु हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके मुंह में भी घाव और सूजन बना देते हैं जिससे वो खा नहीं पाते। तो इतनी घातक बीमारी को होने से रोकने का बहुत आसान उपाय है कि बस अब हम हमारे पशुधन के टीकाकरण में जो है FMD का टीका जरूर लगवाएं। हमारे जो भी मादा पशुधन हैं उनमें ब्रुसेलोसिस और बोवाइन के टीके भी जो है हमको लगवाना चाहिए, तो ये इनको तपेदिक जैसी बीमारियों से भी जो है बचाते हैं। और सभी तरह से यदि बोला जाए तो क्योंकि पशु चिकित्सा सेवाएं बहुत न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध हैं या लगभग मुफ्त हैं, तो इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा के हम हमारे पशुधन के रोग बोझ को कम कर सकते हैं और हमारे पशुपालकों के आर्थिक बोझ को भी कम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य जांच जो ग्राम स्तर पर होती है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है और उसके क्या फायदे होते हैं। यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए क्या क्या गतिविधियां की जाती हैं और उसके क्या अपेक्षित परिणाम हमें मिल पाएंगे।
0: तो यदि हम स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के लिए गतिविधियों की बात करें तो पहला तो होगा कि हम स्वास्थ्य जांच और निदान के लिए जो है उन समस्याओं की पहचान करें जिसके लिए हमारे पशुधन का जो है स्वास्थ्य जांच और निदान करवाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम जो पहचानी गई स्थितियां हैं उसके अनुसार भी बाकी हमारे जो गांव के किसान हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं कि क्या उनके पशुधन में भी इस तरह की स्थितियां चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से देखी जा रही है या उनको ऐसा लग रहा है क्या। तो इसी के साथ में जो है टीकाकरण अभियान के रूप में हम जो है इसको ले सकते हैं ग्राम स्तरों पे।
1: बिल्कुल।
0: तो जो भी प्रचलित बीमारियां हैं जिनके खिलाफ टीके जिस समय पे लगाए जाते हैं, तो एक तो किसानों को जो है अपने स्तर पे उसका रिकॉर्ड रखने की थोड़ी सी आदत रखना होगी ताकि उन्हें ये पता रहे कि ये वाला टीका लग चुका है और ये वाला टीका बाकी है, क्योंकि कुछ टीके ऐसे हैं जिनको साल में 2 से 3 बार तक लगवाना पड़ता है, यानी कि उनका बूस्टर डोज दिया जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा वो उसके लिए या तो कहीं पे लिख के रख लें कि ये टीका लग चुका है और अब कितने समय के बाद वापिस इसको लगवाना है। तो यदि ग्राम स्तर पे सारे पशुपालक मिल के इस तरह के आयोजन करते हैं कि वो या तो एक जगह पे अपने पशुधन को इकट्ठा कर लें और जो पशु स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सूचित करें कि हम इस दिन अपने सारे पशुधन को इकट्ठा करेंगे, तो वहां पे आप आके उनका स्वास्थ्य जांच कर लीजिए, उसके जो निदान हो सकते हैं वो कर दीजिए और इसी के साथ में उस समय पे होने वाले टीकाकरण के लिए भी जो है हम हमारे पशुओं को इकट्ठा करेंगे तो आप टीका भी लेके आइए। क्योंकि टीकाकरण भारत सरकार ने भी जो है अनिवार्य रूप से एक बड़े अभियान के रूप में लिया है, तो हमारे पशुपालकों को भी जो है इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कुछ स्तरों पे हो सकता है कि हमें किसानों के लिए कार्यशालाएं करना हो, हम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो इसमें मदद कर सकती हैं, इसी के साथ साथ में पशु स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो स्वयंसेवी संस्था उनके सहयोग से इसको मिलके कर सकते हैं, कार्यशालाओं का आयोजन जिसमें हमारे पशुधन के स्वास्थ्य प्रबंधन को लेके बात हो, बीमारियों की रोकथाम को लेके बात हो, उनके उचित खान पान और समय समय पे क्या दिया जाना चाहिए, उनके पोषण में क्या चीज़ें होना चाहिए, पशुशालाओं में स्वच्छता प्रबंधन किस तरह से हो, इसके लिए जो है एक समय में या अलग अलग समय में हम छोटे छोटे अंतराल पे छोटे समय के लिए थोड़े समय के लिए उनके उपलब्ध समय के अनुसार जो है उन कार्यशालाओं का आयोजन यदि लगातार करते हैं तो इससे किसानों को जो है ये पता रहेगा कि उनको कब किस तरह से क्या अपने पशुधन के स्वास्थ्य और हित में निर्णय लेना है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से गांव स्तर पर पशु स्वास्थ्य और टीकाकरण की आवश्यकता को हमें बढ़ावा देना चाहिए और क्या क्या गतिविधि करनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को हमें बताया है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से अगर ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तो मवेशियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उच्च टीकाकरण की दरें हैं वो बढ़ जाएंगी, इसी के साथ किसानों का ज्ञान भी बढ़ेगा और मजबूत पशु चिकित्सा सेवाएं भी पशुओं को मिल पाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं

0: बच्चों के अधिकार।
1: घर परिवार में दुलार, माँ का पहला दूध व अर्ध ठोस आहार, बच्चों का है अधिकार।
2: जी हाँ, पर्यावरण सुधार, हरा भरा संसार, प्रेम पूर्ण व्यवहार और शिक्षा संस्कार, ये भी है बच्चों के अधिकार।
3: बिल्कुल सही। सभी प्रदूषण को रोकें, बस्ता लेवे हल्का, बाल मजदूरी को रोकें, पिता को दे रोजगार, ये सभी हैं बच्चों के अधिकार।
2: वाग्धारा संस्था और वागा रेडियो द्वारा जनहित में जारी।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं

0: हम बात करने वाले हैं बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: आज का युग प्रगति और विकास का युग है श्रोता साथियों, लेकिन इसी विकास के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है और वो है बढ़ती जनसंख्या।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना केवल एक संख्या नहीं है बल्कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जमीन, पानी और भोजन, ऊर्जा, रोजगार जैसे संसाधनों पर दबाव भी पड़ता जा रहा है। इसीलिए साथियों आपसे कहना

0: सोच भी बढ़ती है, तभी संसाधन सुरक्षित रहते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना मनोरंजन के लिए हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बात रहने वाली है बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों पर दबाव को लेकर।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जनसंख्या भी निरंतर बढ़ती रही है।

0: बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसका सबसे अधिक प्रभाव प्राकृतिक और मानवीय निर्मित संसाधनों पर पड़ता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि यानी कि किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या का लगातार बढ़ना। साथियों, भारत जैसे देश में समस्या और भी गंभीर है, यानी कि हमारे देश में समस्या गंभीर है क्योंकि यहाँ संसाधन सीमित है और जनसंख्या विशाल। आज भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल हो चुका है।
0: जी जी।
1: हम देखते हैं अंजलि कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गाँव में भी इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है।
0: बिल्कुल,
1: हर जगह भीड़ होती है, संसाधनों की कमी होती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। कहा गया है कि बढ़ती भीड़ का बोझ बढ़े, संसाधन फिर कैसे सबके लिए सजे। यानी कि श्रोताओं, अगर ऐसे ही भीड़ बढ़ती गई तो संसाधन कैसे मिलेंगे सबको।
0: जी हाँ जागृति जी, हम देखते हैं कि संसाधन वे साधन हैं जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अगर प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो जल, वायु, भूमि, वन और खनिज। मानव निर्मित संसाधन

0: संक्रमित है, जिससे खाद्यान्न की कमी और महंगाई भी बढ़ रही है।
1: जी हाँ अंजलि, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधन को लेकर, तो श्रोताओं आपको कहना चाहेंगे कि संसाधन वे सभी साधन हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि पानी, जंगल, खनिज, भूमि, ऊर्जा, ये संसाधन सीमित है और इनका संतुलित उपयोग ही हमें भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो इन संसाधनों की मांग भी तेजी से बढ़ती है।
0: जी जी।

0: स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जिससे मृत्यु दर कम हुई हो, परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता। श्रोता, इन कारणों से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पाता और संसाधन पर दबाव बढ़ता जाता है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, हम देखते हैं कि खेती और उद्योग के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसके कारण जंगल कट रहे हैं और पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। श्रोता साथियों, अधिक लोग मतलब अधिक वाहन, अधिक उद्योग और अधिक कचरा, इससे वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: जब जनसंख्या अधिक होती है जागृति जी, और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है, जिससे गरीबी,

0: यही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी और जागरूकता की कमी के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि शहरों में अधिक जनसंख्या के कारण भीड़, ट्रैफिक, प्रदूषण और आवास की समस्या बढ़ती है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, इनके समाधान के कुछ उपाय हैं जो हमें अपनाने होंगे, जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश हर घर तक पहुंचाना जरूरी है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा से जनसंख्या नियंत्रण में मदद मिलती है। रेडियो, टीवी और सामाजिक माध्यमों के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पानी बचाना, बिजली बचाना और पर्यावरण की रक्षा

0: कि इसके कुछ समाधान के उपाय है, जैसे कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूक करना जरूरी है। शिक्षा से ही सोच में बदलाव आता है। हम कह सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या कोई छोटी समस्या नहीं है अंजलि, बल्कि ये हमारे भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि आज हम इस पर ध्यान नहीं देंगे श्रोताओं, तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमें समझना होगा श्रोताओं कि संसाधन सीमित है और उनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल,
0: जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकार का काम नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए हम सभी को मिलकर जागरूक होना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा।
1: जी हाँ।
0: और संसाधनों का सही उपयोग करना होगा, क्योंकि कहा गया अंजलि कि जब सोच बदलती है तब समाज बदलता है, जब जनसंख्या संभलती है तब भविष्य संवरता है। इसलिए श्रोता साथियों, संसाधनों को

0: नहीं श्रोताओं, ये हमारे अस्तित्व, हमारे भविष्य और हमारी आने वाली पीढ़ियों के सपनों से जुड़ा हुआ सवाल है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं श्रोताओं जब संसाधनों की कमी हमारे जीवन को कठिन बना देगी। पानी के लिए संघर्ष, भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा और स्वच्छ हवा के लिए तरसना हमारी मजबूरी बन जाएगा।
1: जी हाँ,
0: लेकिन अभी भी समय है, बदलाव की शुरुआत आज, अभी और यहीं से हो सकती है श्रोताओं। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा, जब हर परिवार संतुलन अपनाएगा और जब समाज मिलकर जागरूकता फैलाएगा, तभी इस समस्या का हल संभव है।
1: जी,
0: याद रखिए श्रोताओं, विकास वही है जो संतुलन के साथ हो। अगर जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बिगड़ गया तो सारी प्रगति बेकार हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए जरूरी है अंजलि कि हम सोच समझकर कदम उठाएं और एक जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि श्रोताओं संख्या नहीं संतुलन जरूरी है। भविष्य नहीं आज की जिम्मेदारी पूरी है, जो आज संभल जाए वही कल सवार पाएगा। संसाधनों को बचाकर ही मानव जीवन मुस्कुराएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
0: बिल्कुल,
1: जब तक हम अधिक पानी की मानसिकता से हटकर संतुलित और आवश्यक उपयोग की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। साथ ही श्रोता साथियों, यह भी जरूरी है कि हम विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में न देखें, बल्कि उसे सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़कर समझें।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा विकास वही है जिसमें संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना रहे। श्रोता साथियों, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हमें आज ही छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जिससे परिवार नियोजन को अपनाना, शिक्षा को प्राथमिकता देना, पानी और ऊर्जा की बचत करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनना, ये छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर बड़े बदलाव का आधार बनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए ये कहना उचित होगा जागृति जी कि यदि हम समय रहते जागरूक होकर संतुलन की दिशा में प्रयास करें तो हम न केवल वर्तमान समस्याओं को कम कर सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध दुनिया भी सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: यही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है और भविष्य के प्रति हमारा कर्तव्य भी है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मोटा अनाज मोटा अनाज,
2: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
0: बाजरा मक्का रागी ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार,
1: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
2: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में हाजिर होते हैं तो हम बात करते हैं हमारे तन मन और सेहत को लेकर। आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी एक नया विषय जुड़ने जा रहा है जो कि बहुत खास है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा चौंकाने वाला भी हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, हम बात करें डिजिटल फास्टिंग को लेकर। क्या सच में मोबाइल से दूरी बनाकर हम अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं मनीषा कि आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं।
0: जी हाँ,
1: सुबह उठते ही फोन देखना, रात को सोने से पहले फोन चेक करना, खाली समय हो तो फोन, बोरित हो तो फोन। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये डिजिटल दुनिया धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है? क्या थोड़ी दूरी बनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? आज इन सभी सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे दोस्तों।
0: जी हाँ कशिश,
1: और हम बात करेंगे कि डिजिटल फास्टिंग जरूरी क्यों है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल फास्टिंग से ठीक रहेगी सेहत को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और विभिन्न एप्स ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन श्रोता साथियों, इसके साथ ही हमारी दिनचर्या, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहराई से प्रभाव डाला है।
1: बिल्कुल,
0: सुबह उठते ही मोबाइल देखना और रात को सोने से पहले तक स्क्रीन से चिपके रहना श्रोता साथियों आज आम आदत बन चुकी है। ऐसे में कशिश, डिजिटल फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, डिजिटल फास्टिंग का अर्थ ही निश्चित समय के लिए मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, सोशल मीडिया से पूरी तरह से या आंशिक रूप से दूरी बनाना, ताकि श्रोता साथियों मन और शरीर को आराम मिल सके। यह ठीक वैसे ही है श्रोता साथियों जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: उसी प्रकार मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए डिजिटल उपवास भी आवश्यक है कशिश।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, जैसे कि हम शरीर को डिटॉक्स करने के लिए उपवास करते हैं, ठीक वैसे ही दिमाग को आराम देने के लिए हम डिजिटल फास्टिंग कर सकते हैं। यह पूरी तरह छोड़ना नहीं श्रोता साथियों, बल्कि संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा उपाय है। क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में डिजिटल लाइफ का बढ़ता असर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, आज की जिंदगी में डिजिटल डिवाइस सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक आदत और लत बन चुके हैं हमारी। ऐसे में हर 5 मिनट में फोन चेक करना, बिना वजह स्क्रॉल करते रहना, नोटिफिकेशन आते ही ध्यान भटक जाना, ये सब श्रोता साथियों धीरे धीरे हमारे दिमाग पर असर डालते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इससे हमारा ध्यान कम होता है, याददाश्त कमजोर होती है और मानसिक थकान भी बढ़ती है।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि डिजिटल फास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर कुछ समय के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना बंद कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: यह श्रोता साथियों सीमित समय तक करता है। यह समय कुछ घंटों का, एक दिन का या कुछ दिनों का भी हो सकता है। मुख्य रूप से कशिश हम देखते हैं कि यह मानसिक तनाव को कम करता है, ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को भी बढ़ाता है, नींद में सुधार करता है और वास्तविक जीवन से संबंधों को मजबूत करता है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि आज के युवा और बच्चे सबसे ज्यादा डिजिटल उपकरणों के शिकार हो रहे हैं। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, लगातार नोटिफिकेशन चेक करना, गेम्स और वीडियो पर समय बिताना, श्रोता साथियों ये सब धीरे धीरे एक लत का रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वो कैसे श्रोता साथियों? तो सोशल मीडिया पर हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: हम खुद की तुलना उनसे करने लगते हैं, जिससे हम चिंता और तनाव में आ जाते हैं। साथ ही इससे नींद की समस्या भी होती है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, रात को देर तक मोबाइल चलाने से हमें नींद नहीं आती, जिससे मनीषा नींद की गुणवत्ता खराब होती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से अकेलापन बढ़ता है और मन हमारा उदास रहता है, जिसके कारण हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमारी आपसे चल रही हैं कि किस प्रकार से डिजिटल फास्टिंग करने से हम अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं और हमारी सेहत बेहतर भी रहेगी।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले हम जान पाए थे डिजिटल चीजों का ज्यादा उपयोग करने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहीं अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए मनीषा, तो देखते हैं कि डिजिटल लत सिर्फ दिमाग ही नहीं शरीर को भी प्रभावित कर सकती है।
1: जी बिल्कुल कशिश,
0: इससे हमें आंखों की समस्या हो सकती है, जैसे कि आंखों में जलन, सूखापन, धुंधला दिखाई देना, साथ ही गर्दन और पीठ दर्द भी हो सकता है। जैसे कि लंबे समय तक झुककर बैठने से गर्दन में या फिर कह सकते हैं कि पीठ में दर्द होता है, जिससे हमारी स्थिति भी गलत हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही मोटापे की समस्या भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ज्यादा देर तक बैठते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं तो इससे शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: जिससे हमारा मोटापा बढ़ता है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि रात को सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करने से नींद पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी यानी कि श्रोता साथियों ब्लू लाइट नींद के हार्मोनों को प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल फास्टिंग अपनाने से श्रोता साथियों हमें नींद जल्दी आती है, गहरी नींद आती है और सुबह हम तरोताजा महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि आज के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। डिजिटल फास्टिंग से श्रोता साथियों परिवार के साथ समय बढ़ता है, बातचीत और समझ भी बेहतर होती है, साथ ही भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत होता है।
0: जी,
1: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि डिजिटल उपकरणों के कारण बार बार हमारा ध्यान भी भटकता है। अगर हम डिजिटल फास्टिंग का उपयोग करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है, काम जल्दी और बेहतर होता है और साथ ही हमारी पढ़ाई में भी सुधार होता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। साथ ही रिश्तों पर असर की बात करें तो डिजिटल दुनिया हमें जोड़ती जरूर है साथियों, लेकिन असल जिंदगी के रिश्तों को ये कमजोर भी करती है। हम देखते हैं कि परिवार के साथ समय कम बिताना, बातचीत कम होना और इससे भावनात्मक दूरी भी बढ़ जाती है।
1: जी हाँ,
0: कई बार तो श्रोता साथियों साथ में बैठकर भी अलग अलग स्क्रीन में खोए रहते हैं।
1: जी जी,
0: तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ता है। और इसके लिए उपाय सिर्फ एक ही है कि हम डिजिटल फास्टिंग करें।
1: जी
0: दोस्तों, डिजिटल फास्टिंग हमारे जीवन में संतुलन लेकर आती है। जैसे कि हमारे दिमाग को आराम मिलता है, ध्यान हमारा बढ़ता है, नींद सुधरती है और रिश्ते भी इससे मजबूत होंगे। ये हमें ये याद दिलाती है मनीषा कि असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को बताएं कि डिजिटल फास्टिंग भी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, अचानक पूरा दिन मोबाइल छोड़ना मुश्किल हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: शुरुआत में 1-2 घंटों से शुरू करें, साथ ही समय निर्धारित करें। सुबह उठते ही 1 घंटे तक मोबाइल न देखें, सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहें। साथ ही श्रोता साथियों अनावश्यक नोटिफिकेशन ध्यान भटकाते हैं, तो हमें बार बार मोबाइल भी चेक नहीं करना है। साथ ही श्रोता साथियों हमें किताबें पढ़नी है, योग करना है, व्यायाम करना है, परिवार के साथ समय बिताना है और प्रकृति के साथ समय बिताना है, जिससे श्रोता साथियों हम डिजिटल फास्टिंग को अपना पाएंगे और साथ ही मोबाइल से दूर रह पाएंगे, जिससे हमारा मानसिक तनाव और कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात करें संतुलन बनाने की, तो दोस्तों डिजिटल फास्टिंग का मतलब तकनीक से भागना नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करना है। हम देखते हैं कि आज के समय में डिजिटल से दूर रहना संभव नहीं है, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ऐसे में आपसे कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया आपकी ताकत है, लेकिन अगर सही तरीके से उपयोग न किया जाए तो यही आपकी कमजोरी भी बन सकती है।
1: जी हाँ,
0: अपने समय का मूल्य समझे साथियों और स्क्रीन से ज्यादा जीवन को महत्व दे। सुबह उठते ही फोन न देखे, सोने से पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दे जैसा कि आपने बताया मनीषा, और अपने दोस्तों से आप मिले, प्रकृति के साथ भी आप समय बिता सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा उपाय है जिससे आप अपने जीवन में डिजिटल फास्टिंग को अपना सकते हैं। हम कह सकते हैं मनीषा श्रोता साथियों से कि डिजिटल फास्टिंग कोई ट्रेंड नहीं बल्कि एक जरूरत है।
1: जी हाँ,
0: ये हमें ये सिखाती है कि जीवन सिर्फ स्क्रीन में नहीं बल्कि रिश्तों, अनुभवों और भावनाओं में भी होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम थोड़ा समय खुद को दे साथियों तो हम ज्यादा खुश, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा संतुलित जीवन जी सकते हैं।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं आज के तेज रफ्तार डिजिटल युग में हमें यह समझना होगा कि तकनीकी हमारे लिए है, हम तकनीकी के लिए नहीं।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम समय समय पर डिजिटल फास्टिंग को अपनाते हैं तो हम अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही श्रोता साथियों डिजिटल फास्टिंग आज की आवश्यकता बन चुकी है, यह केवल एक आदत नहीं है कशिश, बल्कि यह एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक कदम है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं श्रोता साथियों, मानसिक शांति पाना चाहते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो डिजिटल फास्टिंग को अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा समय खुद को दे, थोड़ा समय अपनों को दे और थोड़ा समय बिना मोबाइल के भी जी कर देखें। आप पाएंगे कि असली खुशी स्क्रीन के बाहर है।
0: जी हाँ मनीषा, दोस्तों कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया में रहिए लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। कभी कभी फोन को साइड में रख के देखिए और जिंदगी को जीना सीखिए साथियों।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि यही एक स्वस्थ जीवन जीने का सही तरीका है।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से डिजिटल फास्टिंग को लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अरे गोरी, इतने सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
3: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
2: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
3: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
2: ये हुई ना बात गोरी।
0: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: मोटा अनाज, मोटा अनाज।
3: क्या है भाई ये मोटा अनाज?
4: बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, पोषण से है भरपूर आहार।
2: नित्य करे जो सेवन इनका, जीवन स्वस्थ रहेगा उनका।
3: जी हाँ साथियों, दाल अनाज मिलाकर खाएं, स्वस्थ जीवन हम अपनाएं।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वरा अमर हित्ता भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
0: राम राम होवे भाईयों बुनु आप सब हमली रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूं हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: तो भाई बुनो लेने हाजिर थे यहाँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय निहाते मनीषा बुन आज कार्यक्रम में अपने भाई बुनो तो की बातचीत नो विषय है कि अपने गाँव में पलायन की समस्या केम वधी रही है आना हूँ कारण है समाधान ना हो पाए थे शके आपने देखो हो कि अपना जो भारत देश है इनी पहचान अपने गाँव में से है पर आज ना टाइम में गाँव जो है ये धीरे धीरे खाली थाता जा रहे हैं। रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य ने बेहतर जीवन की तलाश में मुनकजे है अपने शहर नी आड़ी जाई रहे हैं। आ पलायन कई मजबूरियों ने कारण थी सके जेने कारण आपने देखो हो कि अपने जो गाँव है एणनी सामाजिक आर्थिक ने सांस्कृतिक जी चीजें हैं ये बदली रही हैं। गांव कमजोर पड़ी रहे हैं ने शहरों माते बोझ वधी रू है। तासे अपने कार्यक्रम में ये जानूंगा कि पलायन केम वधी रू है ने आने अपने हरते संतुलित करी शका।
0: होवे अंजलि बोन तो आना विषय माते अपने भाई बहनों कती घना अक्कानी वाते थेगा अभी हमला आगे इतने मोरे करो अपनी बातें।
1: होवे तो बहन बोनू आप हमारे तरह सु आपड़ो रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: सृष्टि का सृजन है बेटी, घर का आंगन है बेटी।
1: जिंदगी को जिंदगी से जोड़ते जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: जी हाँ, बेटियों को मत रखो निरक्षर, बेटियाँ भी बनेगी बड़ी अफसर।
3: खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी।
0: जी हाँ, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी।
1: जी हाँ साथियों, दे दो दर्जा बेटियों को समान अधिकार का, उनकी ख्वाहिशों पर न अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
2: संसार देश जिंदगी की जरूरत है बेटी, बेटी से बन औरत हर आदमी की पूरक है बेटी।
3: जी हाँ साथियों, बेटी पत्नी माँ कई रूप है बेटी के, प्यार स्नेह एवं सानिध्य हर रूप में देती है।
0: भ्रूण हत्या घोर अपराध, देश का अपमान है, बेटी के प्रति छोड़ दो निष्ठा, इसी में समाधान है।
1: जी हाँ साथियों, बनो ज्ञानी बनो दानी, अब तो लोगों जग जाओ, मत करो भ्रूण हत्या, बेटी बचाने में लग जाओ।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

जी ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खा मोमिन की गजल है, जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।